मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त अनुराग शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को है हिंदी में समाचार। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टि। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल

0: गुरुवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05:15 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए समूह स्वर में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। वंदना में अगला भक्ति गीत सुनिए, कविता पोडवाल और विनोद राठौर के स्वर में।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में अगला भक्ति गीत सुनिए विष्णु मेहरोत्रा के स्वर में।

0: श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री केजी माहेश्वरी का आलेख। वाचक स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी का है।
1: मानव का एक स्वभाव है, वो दूसरों की बुराई करने व सुनने में बहुत ही रुचि लेता है। वह नहीं समझता कि जो ही हम किसी की निंदा करते हैं, नरक का द्वार हमारे लिए अपने आप ही खुल जाता है। भले ही आज का मानव विशेष तौर से अपने को शिक्षित कहने वाला मानव, स्वर्ग व नरक में विश्वास न करने वाला मानव है, पर रहीम के शब्दों में रहीमन जिव्वा बाबरी कह गई सरग पताल, आप तो कहे भीतर गई जूती खात कपाल। बहुत से लोग तो ये भी कहते हुए मिल जाएंगे कि निंदा करने से तुरंत ही लाभ प्राप्त होता है। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि क्षणिक लाभ के लिए हम अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इस निंदा का मूल्य न चुकाना पड़े। इसी भ्रम में एक व्यक्ति ने अमेरिकी पत्र में जेम्स शील्ड नामक व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई। बड़ी चटपटी भाषा में वो पत्र छापा गया। इस पत्र को पढ़कर शील्ड आग बबूला हो गए और पत्र लेखक के गुमनाम होते हुए भी वो उसके घर तक पहुंच गए। बस फिर क्या था, दोनों में बहस हुई और तलवार से द्वंद्व युद्ध का फैसला हुआ। नियत तिथि को दोनों एकत्रित हुए, पर उनमें से एक व्यक्ति जिसने पत्र छपवाया था द्वंद्व युद्ध जानता तक न था। खैर, कुछ लोगों ने बीच बचाव करके फैसला किया, तब वह व्यक्ति बच सका। कौन था वह व्यक्ति, जानते हैं? वह अमेरिका के शिखर तक पहुंचने वाले एक राष्ट्रपति थे। इस निंदा के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के लिए यही सलाह है कि वो निंदा से बचें। निंदा करने वाले व्यक्ति के पास आगे पीछे बहुत से लोग एकत्रित हो जाते हैं, उसे उकसाते भी हैं, और वह यह नहीं समझ पाता कि उससे कितना बड़ा पाप हो रहा है। निंदा करने वाला तो दोषी है ही, पर निंदा सुनकर अपना आपा खोना और भी बेवकूफी है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, उस निंदा से हम अपने दोषों को ढूंढने व उन्हें दूर करने का प्रयास करें। निंदक के विरुद्ध मोर्चेबंदी से कोई लाभ नहीं होने वाला। निंदा का बदला निंदा ही नहीं है, क्योंकि बैर का वृक्ष बड़ी तेजी से फलता फूलता है। कभी कभी तो पुस्त दर पुस्त यह बढ़ता ही जाता है। तब आप ही सोचिए कि यह सौदा कितने घाटे का है। अच्छे व घनिष्ठ मित्र इसी के कारण कभी कभी कटु शत्रु बन जाते हैं। जिन्हें हम प्यार करते हैं, उन्हीं को कभी मिट्टी का तेल डालकर भस्मसात करने से भी हम नहीं चूकते। निंदा के चलते आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हानि तो होती ही है। निंदा करने वाले को लोग दूर से ही पहचान लेते हैं। अतः इस व्यसन से बचें, तभी कल्याण हो सकता है। यदि हम किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो न सही, पर निंदा तो न करें। निंदा करने वाले न तो मानव को देखते हैं और न ही भगवान को। इसीलिए निंदा से बचना ही श्रेयस्कर है।
0: अभी आपने चिंतन में सुना श्री केजी माहेश्वरी का आलेख। वाचक स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी का था। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:35 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

माया नगरी के राजा शीलनिधि के वैभव तथा ऐश्वर्य की तुलना में इंद्रपुरी भी हेय थी। राजा ने जब अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया तो सैकड़ों रूपवान राजे महाराजे उसका वरण करने के लिए वहां उपस्थित हुए। घुमंतु नारद जी भी वहां पहुंचे। राजा शीलनिधि ने उनका उचित आदर सत्कार करके उनसे अपनी कन्या का भविष्य बताने की प्रार्थना की। विश्व मोहिनी का रूप देखकर देवर्षि अपना वैराग्य भूल गए। कन्या के लक्षण ऐसे जिन्होंने देवर्षि के मन में उसे प्राप्त करने की अदम्य लालसा जगा दी, लेकिन उसके लिए वैसे ही रूप की आवश्यकता थी। हरि को अपना सबसे बड़ा शुभेच्छु जान नारद जी ने उनसे अपने लिए उन्हीं का अपना अनुपम रूप मांगा। भगवान ने कहा, हे योगी मुनि, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे वो नहीं देता। मैंने भी आपका हित करने की ठान ली है, अतः आपका अकल्याण नहीं होने दूंगा।

0: अब सुनिए कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज हम आपको सुनवा रहे हैं, उन्नत विधि से सोयाबीन की बुवाई, जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, मानसून आने और बादल छा जाने से ही हम खरीफ फसलों की बुवाई आरंभ कर देते हैं। जहां पर हमारी भूमि जिस फसल के योग्य हो, वहां पर फसलों का चुनाव करके बुवाई करें, जिससे अधिक पैदावार मिल सके। जहां पर दोमट भूमि हो और पानी का उचित जल निकास हो, वहां पर सोयाबीन की बुवाई कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल को नकदी फसल के रूप में भी उगाते हैं। सोयाबीन की बुवाई जून माह के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह में कर देने से पैदावार अधिक मिलती है। सोयाबीन की फसल के अच्छे अंकुरण के लिए मिट्टी को ठीक तरह भुरभुरा बना लें, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी की कमी न हो। बीज का चयन करते समय विशेष सावधानी रखें। बीज की अंकुरण क्षमता 70-80% हो। बीज स्वस्थ हों, आकार एक समान हो, खरपतवारों के बीज न मिले हों, बीज सुडौल हों, बीज चमकदार हों। भदरंगे बीजों का चुनाव बुवाई के लिए न करें। सोयाबीन की प्रमुख प्रजातियां हैं JS 90-41, NRC 37, JS 335, JS 80-21, JS 70-05, NRC 7, JS 75-46, JS 75-44, PK 472, और अपनी उपलब्धता के आधार पर प्रजातियों का चुनाव करके बुवाई करें। बीज दर 80-100 किलोग्राम प्रति हेक्टर रखें। बीजों को बोने से पहले फफूंदनाशक दवाओं से अवश्य उपचारित करके बुवाई करें। बीज उपचार 2 ग्राम थायरम और 1 ग्राम कार्बेंडेजिम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। अगर कार्बेंडेजिम उपलब्ध न हो तो थायोफाइनेट मिथाइल का प्रयोग कर सकते हैं। बीज उपचार करने से बीजों को फफूंदजनित रोग, बीज गलन, बीजांकुरण गलन, भूमिजनित रोगों से बचाव कर सकते हैं। बीजों को फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित करने के बाद 5 ग्राम राइजोबियम कल्चर और 5 ग्राम PSV कल्चर से भी उपचारित करें। सोयाबीन दलहनी और तिलहनी फसल है। इनकी जड़ों में ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित करके पौधों को पोषक तत्वों के रूप में प्रदाय करती हैं। इसलिए पोषक तत्व अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करना चाहिए। 25-30 क्विंटल पकी गोबर की खाद खेत तैयार करते समय अंतिम जुताई के समय भूमि में मिला दें। रासायनिक खादों में 20 किलोग्राम नत्रजन खाद, 60 किलोग्राम फास्फोरस खाद और 20 किलोग्राम पोटास, साथ ही 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टर प्रयोग करें। जहां तक संभव हो सके स्फुर की पूर्ति सुपर फास्फेट के रूप में करें, क्योंकि इसमें 12% गंधक पाया जाता है, जिसे अलग से गंधक प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। जस्ते की कमी वाले क्षेत्रों में 25 किलोग्राम जिंक 3 वर्ष में एक बार मिट्टी परीक्षण के आधार पर अवश्य प्रयोग करें। बीज की बुवाई लाइनों में करें। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 8-10 सेंटीमीटर रखते हुए 2-3 सेंटीमीटर की गहराई पर बीजों की बुवाई करें। प्रत्येक 10 कतारों के बाद एक कतार खाली अवश्य छोड़ें, जिससे नाली बनाकर बरसात के अतिरिक्त जल निकास का प्रबंध किया जा सके। बुवाई के 3-4 दिन तक पक्षियों से अंकुरित पौधों का बचाव करना जरूरी होता है, क्योंकि पक्षियों से फसल को अधिक नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। खरपतवारों से फसल के बचाव के लिए बीज बुवाई के बाद निदानाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। सोयाबीन के साथ साथ मक्का, अरहर, अंतर्वर्ती फसलों के रूप में ले सकते हैं, जिससे फसल की सुरक्षा भी बनी रहती है और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है।
0: कृषि चर्चा में अभी आपने सुना उन्नत विधि से सोयाबीन की बुवाई, जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। श्रोताओं, आज की सबसे महत्वपूर्ण सूचना हम आपको सबसे पहले बताएं, ललितपुर में यार्ड रिमॉडलिंग के कार्य के कारण कई ट्रेनों को आज और आने वाले दिनों में निरस्त कर दिया गया है। वो इस प्रकार हैं, 12649 यशवंतपुर हज़रत निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस 13 से 19 जुलाई तक निरस्त की गई है, 22705 तिरुपति जम्मू तवी एक्सप्रेस ये 14 जुलाई को अपने परिवर्तित मार्ग से चलेगी, 12192 जबलपुर हज़रत निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस 14 से 20 जुलाई, 20493 मदुरई चंडीगढ़ एक्सप्रेस, 12721 हैदराबाद हज़रत निज़ामुद्दीन, 20805 विशाखापट्टनम नई दिल्ली एक्सप्रेस, इसके अलावा 22456 कालका शिरडी साईनगर एक्सप्रेस, 12172 हरिद्वार LTT एक्सप्रेस, 12804 12808 हज़रत निज़ामुद्दीन विशाखापट्टनम, 12644 निज़ामुद्दीन यशवंतपुर एक्सप्रेस। ये सभी अपने परिवर्तित मार्ग से अगले कुछ दिनों में ऑपरेट की जाएंगी। यदि आप आने वाले दिनों में ग्वालियर से रेल यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित ही NTES की वेबसाइट पर देखकर ही रेल यात्रा करें कि ट्रेनों के परिवर्तित मार्ग की स्थिति क्या है और उनके आने का शेड्यूल क्या है। कुछ रोजगार सूचनाओं की ओर ध्यान देंगे। सबसे पहली सूचना है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPPSC ने अपने सिविल सर्विसेज कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज UPPCS के 500 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 27 जुलाई 2026 तक किए जा सकते हैं। आवेदनकर्ता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अधिक जानकारी के लिए आप UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टेक्नीशियन के 6557 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 30 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 33 वर्ष रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप rrb.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। IBPS SO यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने 745 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 21 जुलाई 2026 तक किए जा सकते हैं। न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप ibps.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। श्रोताओं, इसी के साथ मध्य प्रदेश वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के 2548 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुके हैं। आज यानी 13 जुलाई को आवेदन करने की अंतिम तिथि है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप मध्य प्रदेश वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट हायर जुडिशियल सर्विसेज यानी HJS रिक्रूटमेंट 2026 के 27 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप दिल्ली हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ ही बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 3687 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप BSUSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सूचना परक कार्यक्रम दर्पण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। प्रातः 6:55 पर संस्कृत में समाचार और उसके ठीक बाद प्रातः 7 हिंदी में समाचार आपसे कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन उद्घोषितं यत् तेन गगनयान अभियानस्य क्रू मॉड्यूल तंत्राणां त्रयाणां प्रमुख परीक्षणानां सफलं निष्पादनं विहितम्। प्रथम परीक्षणं समुद्रे अवतरणानन्तरं क्रू मॉड्यूल इत्यस्य स्थितिं सुनिश्चेतुं सम्बद्धम् आसीत्, यत् अंतरिक्षयात्रिणां सुरक्षायाः दृष्ट्या अत्यन्तं महत्वपूर्णं मानदण्डं मन्यते। द्वितीय परीक्षणे अम्ब्लिकल तंत्रस्य पृथक्करण प्रक्रियायाः परीक्षणं विहितम्। तृतीय परीक्षणे तावत् शीर्ष आवरण पृथक्करण क्षणे क्रू मॉड्यूल इत्यस्य संरचनात्मक अखंडतायाः प्रामाणिकतां सिद्धम् अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुलाई मासस्य 26 दिनांके आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः साकं स्वकीयान् विचारान् विनिमयिष्यति। अस्य मासिक श्रव्य कार्यक्रमस्य अयम् 37.1%तमो भागो भविता। जनाः निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800117000 इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी ऐप इत्यस्य अथ च माइगोव इति मुक्त मञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति। अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् स्वीकरिष्यन्ते। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य गुजरात राज्यस्य गांधीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य शाक उपविपणन केन्द्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। सहकारिता मंत्रालयानुसारं अस्मिन् कार्यक्रमे श्री शाह एक पेड़ मां के नाम इत्यभियानान्तर्गतं पादपारोपणं विधास्यति। सहैव APMC संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति। अत्रावधौ श्रीशाहः दहेगाम APMC परिषदः सदस्यैः सह अपि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति। गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते GFS गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमणात् परं नवदिल्ल्या पश्चिमेशिया क्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयम् आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्र निन्दां कुर्वता विदेश मन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु 11 भारतीय नागरिकेषु 10 नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत्सु रक्षाकार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारीभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्य अस्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन् दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ 12:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियाँ भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:05:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, सबसे पहले प्रातः 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। 7:20 पर आप सुनेंगे काव्य पाठ साबिर बेग से। फिल्म संगीत का लुत्फ आप ले सकते हैं प्रातः 7:30 से। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम जिसमें हम आपकी फरमाइश पर गीत सुनवाते हैं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, सुनिए प्रातः 10:05 से। प्रातः 8:00 समाचार प्रभात और प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, दोनों ही न्यूज बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगी।

प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी प्रिया शर्मा। आपके साथ तबले पर संगत करेंगे महेश कुमार। हारमोनियम पर साथ होंगे अनिल डंडौतिया। साथ ही सारंगी पर होंगे उस्ताद अब्दुल मजीद खान। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे प्रिया शर्मा से उनके गाए कुछ भजन। प्रातः 8:58 पर इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले की जाएंगी। प्रातः 9:00 आप सुनेंगे सूचना समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हिमांशु विश्वरूप से वायलिन वादन राग विलास खानी तोड़ी में। आपके साथ तबले पर संगत करेंगे निसार हुसैन। प्रातः 9:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। प्रातः 10 जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 10:58 पर इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगी। श्रोताओं, प्रातः 11 से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। प्रातः 11:58 पर, दोपहर बाद 12:58 पर और दोपहर बाद 2:58 पर आप सुन सकेंगे इस घंटे की खास खबरें। श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा भी पुनः आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होगी। सायं 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। यह कार्यक्रम आज आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। सायं 6 NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुना जा सकेगा। सायं 7:20 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल हमारे केंद्र से। आज चर्चा के विषय होंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, फसल चक्र अपनाएं और लाभ कमाएं। साथ ही कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोक माधुरी बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम।

रात्रि 9:30 पर आप मध्य प्रदेश केंद्र से सुन सकेंगे आपकी फरमाइश। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी सुना जा सकेगा। आज का कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें दूरदर्शी नेता बताया। भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। निवेश और प्रौद्योगिकी विकास पर रहेगा फोकस। आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू। प्रदेश भर के 5.5 लाख से अधिक पशुपालकों तक पहुंचने का लक्ष्य। और प्रदेश में मानसून की रफ्तार थमी, अगले 5 दिन भारी बारिश के आसार नहीं। 16 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। शेख हमद बिन खलीफा का कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर की सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हमद एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंत्री किरेन रिजिजू भारत सरकार की ओर से शोक संदेश देने कतर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। नमो ऐप और MyGOV पोर्टल के जरिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक से सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में सहभागिता कर प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों को सम्मानित किया। उन्होंने सभी प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं अपने परिश्रम के बल पर समाज में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करती हैं।
2: प्रतिभा सम्मान समारोह में 591 अलग अलग प्रतिभागियों को आपने ये मौका दिया। ये केवल पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम नहीं है। हमारे अलग अलग प्रतिभाएं अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करती है और संस्कार और राष्ट्र निर्माण के इस महासंकल्प में अपनी क्षमता, बुद्धिमत्ता, युक्ति, समय की सदुपयोगिता, ऐसे कई कारणों से अपने आप को उस रूप में लाती कि वो पुरस्कृत होकर के समाज के सामने अपना नया परिचय पाते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इंदौर में कल एक बड़े पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुड़ानिया गांव स्थित BSF परिसर में आयोजित कार्यक्रम में महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 21 लाख पौधे लगाने और 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना है। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति MPMC के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री शाह एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा लगाएंगे और समिति के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार की गई एक विशेष प्रकाशन पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह दहेगाम APMC बोर्ड के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। वे उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठक कर निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की तकनीकी विकास यात्रा पर विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ

0: ही कई रणनीतिक साझेदारियों और समझौतों का आदान प्रदान भी होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। देश में आम नागरिकों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ घरों में सौर बिजली संयंत्र स्थापित कर बिजली खर्च में प्रतिवर्ष 75,000 करोड़ रुपए की बचत करने का लक्ष्य रखा गया है। आज अच्छी खबर में प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन पर इंदौर से हमारे संवाददाता मनीन्द्र दुबे की ये रिपोर्ट।
2: पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र के 15 जिलों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को एक जन भागीदारी का रूप दे दिया है। पश्चिम मध्य प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया।
3: इंदौर में अब तक लगभग 60,000 सोलर संयंत्र स्थापित हुए हैं और 53,000 आवेदकों को लगभग 414 करोड़ रुपए सब्सिडी हस्तांतरित की जा चुकी है। इस योजना में अब तक कुल 219 मेगावाट क्षमता के संयंत्र कंपनी क्षेत्र के 15 जिलों में स्थापित हो चुके हैं, जिससे लगभग 2,62,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।
2: इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी विमल फौजी ने योजना को ग्रामीणों और किसानों के लिए बड़ी आर्थिक राहत वाली योजना बताते हुए कहा।
4: देपालपुर नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब किसान इस ओर अग्रसित होते जा रहा है। जिस प्रकार उन्होंने अपने खेतों पे लगाया, लेकिन अभी अपने घरों के ऊपर भी सोलर पैनल लगा रहे हैं।
2: वहीं इंदौर नगर निगम सीमा में रहने वाले योजना के हितग्राही रूपेंद्र सिंह चौहान एक महत्वपूर्ण योजना बताते हैं।
5: हमने अपने घर पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। योजना के तहत हमें सरकार से अनुदान मिला है। इसके साथ ही हमारे घर में बिजली पर होने वाले खर्च में भारी कमी आई है।
2: मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
0: दतिया उपचुनाव में टिकट कटने के बाद प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। मिश्रा ने कहा कि किसी का कद पार्टी से बड़ा नहीं होता। उन्होंने पार्टी के फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करने की बात कही। इससे पहले टिकट कटने पर समर्थकों ने हाईवे पर चक्का जाम किया था। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। दतिया उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होना है। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर व्यापारियों के और उद्यमियों के साथ खड़ी है। श्री सिलावट रविवार को कैट द्वारा आयोजित व्यापार उद्योग संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों की समस्याओं के लिए हर 3 माह में बैठकों का आयोजन किया जाएगा और मंत्री ने सभी मुद्दों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। भोपाल के सिंधु भवन में कल आदिवासी जैन जी फेस्ट का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के आदिवासी सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए। महाराष्ट्र की आदिवासी रैपर माही जी की प्रस्तुति कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और मीनाक्षी नटराजन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगवार ने आदिवासी युवाओं को बेहतर शिक्षा और अवसर देने पर जोर दिया। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने करीब 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने सुर्खी में जल्द शुरू होने वाली देहरा बांध परियोजना की जानकारी दी। इस परियोजना पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे 23,000 एकड़ भूमि सिंचित होगी। ग्वालियर में चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 21 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। राज्य साइबर सेल ने इस मामले में 1,82,00,000 रुपए फ्रीज कराए हैं। ठगों ने खुद को निवेश सलाहकार बताकर संपर्क किया था। शुरुआत में अच्छा रिटर्न दिखाकर भरोसा जीता और जांच में सामने आया कि यह गिरोह विदेश से संचालित हो रहा है। रकम को छिपाने के लिए 12 लेयर में 19,000 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। भोपाल में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का 3रा चरण शुरू हो रहा है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डों में 6,330 पशुपालकों से संपर्क किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है। प्रदेश में करीब 60% हिस्से में मानसून के बादल गायब हैं। अगले 5 दिनों तक कहीं भी भारी बारिश के आसार नहीं हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर के एयरपोर्ट परिसर में कल एक पेड़ माँ के नाम अभियान में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने हिस्सा लिया। मंदसौर के सांदीपनी विद्यालय में भी एक पेड़ माँ के नाम 3.0 अभियान के तहत पौधरोपण का आयोजन किया गया। आगरमालवा के साथ नीमच के 6,878 पशुपालकों को दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत प्रेरित किया जाएगा। छतरपुर के शासकीय सांदीपनी विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और रीवा के डाकघर संभाग में पीएलआई और आरपीएलआई व्यवसाय के लिए डायरेक्ट सेल्स एजेंट चयन के लिए 27 से 31 जुलाई तक इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।
6: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:21 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए साबिर बेग से काव्य पाठ।
2: मैं गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। कहना है कि परिंदे परिंदे इल्म उल्फत का ज़माने को सिखाते हैं, परिंदे इल्म उल्फत का ज़माने को सिखाते हैं, दबाकर चोंच में दाना ये बच्चों को खिलाते हैं। परिंदे इल्म उल्फत का ज़माने को सिखाते हैं, दबाकर चोंच में दाना ये बच्चों को खिलाते हैं। ये दिन भर काटते रहते हैं पर्वत धूप में यारो, ये दिन भर काटते रहते हैं पर्वत धूप में यारो, ये मेहनत कश हैं मेहनत करते करते टूट जाते हैं, ये मेहनत कश हैं मेहनत करते करते टूट जाते हैं। इन्हें मालूम है हरगिज़ के पूरे हो नहीं सकते, इन्हें मालूम है हरगिज़ के पूरे हो नहीं सकते, न जाने ख्वाब क्यों ऐसे ये आँखों में सजाते हैं, न जाने ख्वाब क्यों ऐसे ये आँखों में सजाते हैं, दबाकर चोंच में दाना ये बच्चों को खिलाते हैं, परिंदे इल्म उल्फत का ज़माने को सिखाते हैं। मक्ता हाजिर करता हूँ कि समझ में आ नहीं सकती रज़ा फितना गरी इनकी, समझ में आ नहीं सकती रज़ा फितना गरी इनकी, समझ में आ नहीं सकती रज़ा फितना गरी इनकी, उन्हें हम याद करते हैं जो हमको भूल जाते हैं, उन्हें हम याद करते हैं जो हमको भूल जाते हैं, दबाकर चोंच में दाना ये बच्चों को खिलाते हैं, परिंदे इल्म उल्फत का ज़माने को सिखाते हैं। अब एक कथा हाजिर करता हूँ। कथा यूँ हुआ है कि बर्बाद जिंदगानी का आलम न पूछिए,

अभी आप सुन रहे थे साविर बेग से काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म केसरी से इस गीत को। इस गीत को संगीत दिया है जसलीन रॉयल ने और गायक भी हैं जसलीन रॉयल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। अगला गीत सुनिए, फिल्म मणिकर्णिका से। इसको लिखा है प्रसून जोशी ने, संगीत है शंकर एहसान लॉय का, गायक है शंकर महादेवन।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे अमित त्रिवेदी को फिल्म केदारनाथ में। इस गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत था अमित त्रिवेदी का। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए फिल्म गुड बाय से। इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, संगीत है अमित त्रिवेदी का, गायक हैं सुहास भगत और अमित त्रिवेदी।

0: अभी आपने सुना फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू से इस गीत को। इस गीत को लिखा था सिद्धार्थ गरिमा ने, संगीत था सचेत परंपरा का, गायक थे अरिजीत सिंह।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया, जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: शेर की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में आज अगला गीत सुनिए, फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है अनु मलिक का, गायक हैं सुखविंदर सिंह और सोनू निगम।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 8 बजने को है। प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात और उसके ठीक बाद प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, दोनों ही न्यूज़ बुलेटिन आपसे कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगी।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार

0: बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
1: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल आरएन रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय

0: केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
2: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6-लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6-लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताज़ा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मूज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और UAE को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, 1 लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का SIR ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 new एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इनटू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, two new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor Arun Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the Stringent Anti-Crime Bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
8: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Sandeep Andash Gupta, Akashvani News, Kolkata.
7: The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out three major tests of the Gaganyaan crew module systems. More from a correspondent.
9: The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. To do this, a stored cold gas-based uprighting system was developed and tested. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module, where astronauts live, and the service module, which provides power and propulsion. The third test validated the structural integrity of the crew module during the apex cover separation event. Yashasvi Kiryal, Akashvani News, Delhi.
7: Five Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from 4th to 12th of this month. With the exceptional performance, India reaffirmed the growing stature in science education and excellence at the international level. We have a report.
0: Delivering an extraordinary performance at the 56th International Physics Olympiad, these young physicists have brought immense pride to the nation. The gold medal winners are Kanishk Jain from Pune, Riddhesh Anand Bendale from Indore, Rishit Garg from New Delhi, Shreya Suraya from Mumbai and Swarit Joshi from Ahmedabad. With this achievement, India secured the first position jointly with Russia, China, Kazakhstan, South Korea and Taiwan among 381 students from 87 countries. The achievement reflects the strength of India's Olympiad program is spearheaded by the Homi Bhabha Center for Science Education, which is a national center of the Tata Institute of Fundamental Research. With Anand Kumar, Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
7: Union Home Minister Amit Shah is scheduled to attend the inaugural ceremony of the 11th Interpol Digital Forensic Expert Group meeting alongside the first International Investigators Crime Competition and Summit at the National Forensic Sciences University campus in Gandhinagar today. Our correspondent reports that the prestigious global forum will have participation from top dignitaries, including Chief Minister Bhupendra Patel and law enforcement delegates from 47 countries.
2: During the event, Mr. Shah will unveil three pioneering centers of excellence focusing on AI-powered financial crime investigation, crime scene management, and India's first media forensic center. He will also launch Asia's first indigenous cyber forensic investigation van, a Make in India mobile laboratory capable of real-time on-site evidence recovery. A major highlight of this event is the high-tech exhibition featuring cutting-edge cybersecurity tools from over 30 global giants, including Google and Cellebrite. Aparna Khont, Akashvani News, Ahmedabad.
7: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Defence Minister Rajnath Singh, Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, will inaugurate the Lucknow-Kanpur Expressway today afternoon. They will inspect the expressway and inaugurate it at kilometre 49 in Unnao. A report.
4: 63 kilometer long, 6-lane Lucknow-Kanpur expressway with India's second longest elevated corridor is also country's first expressway built with automated and intelligent machine-guided construction technology. Equipped with AI-based speed enforcement, emergency call boxes at every 2 kilometers and two integrated 24/7 control rooms, the expressway is designed for speeds of up to 120 km per hour and is expected to reduce travel time between Lucknow and Kanpur to just 35 to 40 minutes. A car journey between the two cities will cost ₹275 and two-wheelers are not allowed on it. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रसारित हो रहा है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रिया शर्मा से उनके गाए कुछ भजन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं महेश कुमार, हारमोनियम पर साथ हैं अनिल डंडौतिया, साथ ही सारंगी पर आपका साथ दे रहे हैं उस्ताद अब्दुल मजीद खान।

सुगम संगीत का कार्यक्रम श्रोता साथी इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं प्रिया शर्मा। हम आपको सुनवा रहे हैं प्रिया शर्मा से उनके गाए कुछ भजन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं महेश कुमार, हारमोनियम पर साथ हैं अनिल डंडौतिया, साथ ही सारंगी पर आपका साथ दे रहे हैं उस्ताद अब्दुल मजीद खान।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रिया शर्मा से उनके गाए कुछ भजन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे महेश कुमार, हारमोनियम पर साथ थे अनिल डंडौतिया, साथ ही सारंगी पर आपका साथ दे रहे थे उस्ताद अब्दुल मजीद खान। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 8:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी भोपाल से रिले होंगी।
1: भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हमद एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इंदौर में कल एक बड़े पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर बुड़ानिया गांव स्थित बीएसएफ परिसर में आयोजित कार्यक्रम में इस महाअभियान का शुभारंभ किया। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने करीब 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। दतिया उपचुनाव में टिकट कटने के बाद प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। श्री मिश्रा ने कहा कि किसी का पद या कद पार्टी से बड़ा नहीं होता। ग्वालियर में चार्टर अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय से क्रिप्टो करेंसी निवेश के नाम पर 21 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। राज्य साइबर सेल ने इस मामले में 1,82,00,000 रुपए फ्रीज करा दिए हैं। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है। प्रदेश के करीब 60% हिस्से से मानसून के बादल गायब हैं। अगले 5 दिन तक कहीं भी भारी बारिश के आसार नहीं हैं। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए टीमें तय हो चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना, समाचारों और जानकारी पर केंद्रित आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। श्रोताओं, कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं आपका दोस्त अनुराग शर्मा। आज कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का निवास होता है, ऐसा हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है। और इसका साक्षात प्रमाण हमें देखने को मिला, यानी इसके जो साक्षात साक्ष्य हैं वो हमें कुछ दिनों पहले देखने को मिले मध्य प्रदेश के बघौर नामक स्थान पर। इस जगह पर एक एक्सकवेशन किया गया तो उस साइट को भारतीय और विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्व सहमति से माना कि यह साइट 9000 BC की है। इस साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिला और उस पर विचित्र पत्थर भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिला, जो मल्टी कलर एक यूनिक पत्थर था। श्रोताओं, जब पत्थर के विषय में और अधिक खोज शुरू की गई, एक्सकवेशन हो गया, आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्व सहमति से उसका जो कार्बन डेटिंग है वो करके उसकी डेट, उसकी एज पता लगा ली, उसके बाद जब उस पत्थर की खोज की गई कि ये यूनिक पत्थर आया कहाँ से, तो यह पाया गया कि ये जो पत्थर की प्रतिमा है ना, वहाँ लोकल लोग कई हज़ार वर्षों से उसकी पूजा, उस प्रतिमा की पूजा करते चले आ रहे हैं। और वो प्रतिमा थी माँ यानी देवी उपासना की। आर्कियोलॉजिस्ट ने माना कि भारत में 9

2020 से पहले से देवी उपासना की जा रही है। श्रोताओं, आज से ठीक दो दिन बाद भारत में गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें समूचे भारतवर्ष में 9 दिन देवी की उपासना ही की जाती है। श्रोताओं, जहाँ भारतीय संस्कृति एक ओर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की भावना रखती है, यानी हम नारी को सर्वोपरि सम्मान भारतीय संस्कृति में देते हैं, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति क्या कहती है। शेक्सपियर ने फरेलिटी में टाई नेम इज वुमन में कहते हैं कि दुर्बलता तेरा ही नाम स्त्री है। इसके साथ नीसे ने कहा कि स्त्री ईश्वर की दूसरी गलती है। जहाँ पाश्चात्य संस्कृति पहले पुरुष का उदय मानती है, वहीं केवल भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो स्त्री का उदय सबसे पहले मानती है और नारी को सर्वोपरि सम्मान देती है। इसमें ऋषि मार्कंडे लिखते हैं कि प्रकृति नमः भद्राय नमः, जो भद्रा है मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो प्रकृति का रूप है उनको बारंबार नमस्कार करता हूँ। भारतीय संस्कृति में स्त्री का उदय सबसे पहले माना गया और आज भी जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहीं सुख शांति और समृद्धि का निवास होता है। एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको अब परिचय कराते हैं असम की रहने वाली हेमोप्रभा चुटिया जी से। आपने संस्कृत और अंग्रेजी का एक भी शब्द ज्ञात ना होते हुए भी पूरी भगवत गीता कपड़े पर बुंदी। आइए इसको थोड़ा समझते हैं कि हेमोप्रभा जी जो हैं वो असम की रहने वाली हैं, उनको सिर्फ असमिया जो असम की लोकल लैंग्वेज है वो आती है, उन्हें ना तो संस्कृत आती है ना अंग्रेजी ठीक से आती है, फिर भी एक भी शब्द वो पढ़ भी नहीं सकती संस्कृत और अंग्रेजी, ना बोल सकती हैं ना लिख सकती हैं, उसको ना ज्ञात होते हुए भी भगवद गीता पूरे कपड़े पर बुन दिया, लिखा भी नहीं है उसे धागे से बुन दिया है। ज़रा सोचिए कि हम कागज़ पर भी ऐसी कोई भाषा नहीं लिख सकते जो हमें नहीं आती, पर आपने यह अद्भुत कार्य कर दिखाया है। बुनाई का सबसे बड़ा चैलेंज है कि शब्दों को उल्टा बुना जाता है ताकि वो सीधे दिखाई दें, जब उन्हें उल्टा बुना जाएगा तभी सीधा देखने पर वो सीधे दिखाई देंगे, यदि सीधा बुन दिया गया तो आगे की तरफ से वो उल्टे दिखाई देंगे। तो इतने कठिन चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया और बिना अशुद्धि के आपने चमत्कार करके पूरी भगवद गीता लगभग 280 फीट लंबे कपड़े पर आपने बुन दी है, यानी किसी एक 25 मंजिला इमारत जितनी लंबी। आपने यह 2 साल के कठिन परिश्रम से उपलब्धि हासिल की, भारत सरकार ने आपको इस उपलब्धि के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है।

0: श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब चर्चा करते हैं भारत सरकार की कुछ पहल पर। भारत सरकार ने नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 से अभियान शुरू किया गया था और वर्तमान तक ये अभियान चालू है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है युवाओं, महिलाओं और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से मादक पदार्थ यानी जो शराब, गुटखा और अन्यत्र जो व्यसन होते हैं जैसे कि गांजा या और भी अनेक पदार्थ हो सकते हैं, उनके प्रति, उनके दुरुपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना और भारत को नशा मुक्त बनाना, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका जो विस्तार है वो वर्तमान में 272 संवेदनशील जिलों में शुरू किए जाने के बाद अब पूरे समूचे भारतवर्ष में ही किया गया है। ग्वालियर भी इसमें शामिल है। मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों पर विशेष जोर दिया गया है। नशा मुक्ति के जरिए परामर्श और उपचार की सुविधाएं भी भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। इस अभियान के माध्यम से अभी तक 11.2 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इसमें स्वयंसेवक, युवा, सामुदायिक समूह और इन सभी को शामिल किया गया है। माय भारत पोर्टल जैसे विभिन्न डिजिटल माध्यम पर भी नशे से दूर रहने और जागरूक करने के लिए भारत सरकार ने पहल शुरू की है। हम सभी आपसे भी आग्रह करते हैं कि किसी भी तरह से व्यसन से बचें, स्वस्थ और सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करें और समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। श्रोताओं, एक ऐसा ही अभियान अभी भारत सरकार ने मॉनसून सीजन में शुरू किया है, कैच द रेन कैंपेन। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का एक प्रमुख जल संरक्षण अभियान है। इसकी मुख्य टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी बारिश का पानी जहाँ गिरे और जब गिरे उसे सहेज लेना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि बारिश का पानी ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके जरिए हम भूजल स्तर को सुधार सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि ग्वालियर में लगातार हम बोरिंगों के माध्यम से अत्यधिक भूजल का जो जल है, भूमिगत जो जल है, उसका दोहन करते ही चले आ रहे हैं। कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर पानी सुबह से शुरू होता है और अनवरत चलता ही रहता है, उसकी सुध लेने वाला ही कोई नहीं है। तो ऐसे स्थानों पर सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। यदि ऐसा कोई पानी सार्वजनिक स्थानों पर बह रहा है, चाहे वो नल में से हो या बोरिंग में से हो या अन्यत्र कोई माध्यम हो सकता है, उसको बंद कीजिए। संबंधित शिकायत पोर्टल पर शिकायत भी कर सकते हैं यदि कोई खराबी आ गई है तो, और इस अभियान से हमें जुड़ना चाहिए। मानसून के दौरान बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोकना और भूजल स्तर को बढ़ाना, जैसा हमने आपको पहले बताया, इस कैच द रेन कैंपेन का प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रव्यापी अभियान राष्ट्रीय जल मिशन के तहत ये शुरू किया गया है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। ये एक सरकारी केवल योजना मात्र नहीं है बल्कि जन भागीदारी का आंदोलन है, जिसके तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाना, चेक डैम्स बनाना, तालाबों को पुनर्जीवित करना, ये सभी भी शामिल है। इसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों के बाद, वहाँ का एक कोरिया जिला है, कोरिया जिले में एक पहल शुरू हुई, आवा पानी अभियान। इसमें क्या किया गया, इस अभियान में हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठे होते हैं और सोखते गड्ढों का निर्माण करते हैं। महिलाएं और बच्चे जनरली इस अभियान से जुड़े हुए हैं और उन्होंने ऐसे लगभग 2000 गड्ढे उस ग्राम पंचायत में और उस आसपास के क्षेत्र में स्थापित किए हैं ताकि वहाँ भूजल स्तर जो है वो बढ़ सके। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ भूजल का जो स्तर है वो 5 मीटर अधिक हो चुका है। 550 से अधिक तालाबों को पुनर्जीवित किया गया है। सूखे के मौसम में वहाँ जल की अत्यधिक समस्या थी, इस प्रयास के बाद वहाँ का जो भूजल स्तर है उसमें 5 मीटर की उपलब्धि उन्होंने हासिल की और मौसमी पलायन जो है वो 25% कम हो गया है। ग्राम सभा, जिला प्रशासन, स्वयंसेवकों ने मिलकर यह कार्य किया है। महिलाएं नीर नारिकाएं बनकर घर घर सोखते गड्ढों का निर्माण कर रही हैं और युवा जलदूत बनकर इस जागरूकता को फैला रहे हैं। वैसा ही हमें हमारे नगर निगम क्षेत्र में, हमारे पूरे ग्वालियर जिले, पूरे प्रदेश में इस अभियान को सफल बनाना चाहिए और जहां भी संभव हो सके बारिश के पानी को संजोकर रखना चाहिए। श्रोताओं, इसके साथ ही भारत सरकार ने आज यानी 13 जुलाई को एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कल कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर में सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से नहीं होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वह एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू भारत सरकार की ओर से कतर को शोक संदेश देने के लिए आज रवाना होंगे। इसके साथ ही आप श्रोताओं, जैसा कि जानते हैं कि बारिश का मौसम है, शुरू हो चुका है, हम सभी को भीगना पसंद होता है। कई बार मौसमी बीमारियां हमें इस बारिश के मौसम में भीगने के बाद घर कर लेती हैं। तो आइए आपको कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जिनको अपनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं और बारिश का आनंद भी ले सकते हैं। ऐसे तीन टिप्स में पहला टिप है कि आप अपने दिन की शुरुआत जो है वो एक ग्लास पानी में थोड़ा सा अदरक, शहद, हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च को ऐड कीजिए, उसे उबाल लीजिए और उस जो काढ़ा कह लीजिए या पेय पदार्थ कह लीजिए, वो जो बन जाएगा उसको चाय की तरह सिप सिप करते हुए पी लीजिए। यह आपके गले को आराम देगा और मौसम के बदलने से जो इन्फेक्शन आपको हो सकता था उसको कम कर देगा। दूसरा उपाय है, अपने डाइट में विटामिन सी रिच फूड्स को अवश्य रखिए, जैसे आंवला, नींबू, अदरक, संतरा। हर रोज़ एक गिलास नींबू पानी में चुटकी भर काला नमक डालकर पीजिए, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी। बारिश के मौसम में बाहर का जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड ही कीजिए। घर का बना गर्म और हल्का भोजन करिए, जिससे आपकी जो गट हेल्थ है वो स्ट्रांग रहेगी और आप मौसमी बीमारियों से बचे रहेंगे।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब चर्चा करते हैं कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के 135वें संस्करण में असम की महिलाओं के एक इनिशिएटिव के बारे में चर्चा की। वो इनिशिएटिव था हरगिला पक्षी को बचाने का कार्य। आपने उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्य को अप्रिशिएट किया और आइए अब आपको बताते हैं कि हरगिला पक्षी के बारे में कुछ जानकारियाँ। 2004 में हरगिला पक्षी की पॉपुलेशन जो थी, जनसंख्या जो थी, वो 450 से भी कम रह गई थी। फिर कंजर्वेशन के बाद आज 1800 के लगभग हरगिला पक्षी की जनसंख्या है, लेकिन आज भी आईयूसीएन में अभी भी यह पक्षी नियर थ्रेटेंड में ही आते हैं। भारत में ये दो राज्यों में पाए जाते हैं, असम और बिहार। इसके साथ कंबोडिया, एक अन्यत्र जो देश है कंबोडिया, उसके कुछ पॉकेट्स में भी ये पाया जाता है और ये जनरली वेटलैंड्स के पास यानी आर्द्र भूमि के पास ही रहना पसंद करते हैं। असम की भाषा में हरगिला का मतलब होता है बोन स्वेलर, यानी वह पक्षी जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाए। आप इन्वायरमेंट को डिसीज फ्री रखने में भी ये पक्षी मदद करता है और इन्हें नेचर के क्लीनिंग क्रू के रूप में देखा जाता है। यह बहुत टॉकेटिव पक्षी होता है, आपने ठीक सुना, इसको बातें करना बहुत पसंद होता है। अपनी भाषा में लगातार ही कुछ ना कुछ आपस में बोलते ही रहते हैं, इसलिए इसे टॉकेटिव पक्षी भी कहा जाता है। यह कदम के पेड़ पर अधिक निवास करते हैं और इनके विलुप्त होने का कारण भी फिर इसे ही माना जाता है कि जिस प्रकार कदम के पेड़ों को धीरे धीरे काटा जाने लगा तो ये पक्षी भी धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर आ गए थे। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट हैं, इनकी पहल पर इस पक्षी का कंजर्वेशन जो है वो शुरू हुआ और उन्होंने महिलाओं को इससे जोड़ा और असम की महिलाओं ने इस पक्षी के कंजर्वेशन को सभ्यता से जोड़कर आज इसकी संख्या को 1800 तक कर दिया है। इसके साथ ही एक दूसरी पहल थी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के व्यावरा की महिलाओं के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की। इन महिलाओं ने प्लास्टिक मुक्त अभियान की पहल को समूचे जिले में शुरू किया है। खुद से शुरू हुई ये पहल कैसे एक जन जागरूकता अभियान बन गई। उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक को खुद छोड़ा, अपने आसपास के परिवेश में त्याग कर आया, पूरे व्यावरा जो कस्बा है उसमें त्याग कराया, उसके बाद जिले में त्याग कराया। सिर्फ त्याग ही नहीं कराया, अभी तो उस प्लास्टिक बोतल से सुंदर सुंदर चित्रकारी करके और सुंदर सुंदर, जैसे हमारे यहाँ अपने वेस्ट से बने हुए चौराहों पर लोहे के स्कल्पचर देखे होंगे, वैसे ही वहाँ प्लास्टिक बोटल्स और प्लास्टिक के कचरे से स्कल्पचर बनाए गए और उन्हें चौराहों की सुंदरता के लिए सजाया गया।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, अब समय हमें अनुमति नहीं दे रहा कि आपके साथ चर्चा को जारी रखा जाए। कार्यक्रम में आपके साथ मैं था आपका दोस्त अनुराग शर्मा। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सूचना समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हिमांशु विश्वरूप से वायलिन वादन। राग है विलास खानी तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं निसार हुसैन।

0: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हिमांशु विश्वरूप से वायलिन वादन राग विलास खानी तोड़ी में। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे निसार हुसैन। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 10 बजने को है। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: बोल रहे हैं, प्रातः के 10 बजे हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है गुना जिले की चिट्ठी। आलेख रोहित गोस्वामी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात शिक्षा की। बजरंगगढ़ के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले की कक्षा 5 में पढ़ रहे पात्र विद्यार्थी 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी। शिक्षा के बाद अब बात करते हैं जनकल्याण की। मुख्यमंत्री जनकल्याण 2.0 योजना के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीते दिनों राज्य के 16,754 श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। गुना जिले के 239 श्रमिक परिवारों के खातों में भी 5,36,00,000 रुपए सीधे भेजे गए। बमौरी के भौरा में करीब 280 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया गया। इस परियोजना से करीब 225 गांवों के 2,00,000 से अधिक लोगों को बेहतर और निर्बाध बिजली मिलेगी। गुना जिले के मौसम का हाल भी लगातार बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बादल छाए हुए हैं और कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई है। 1 जून से 9 जुलाई तक जिले में औसतन 270 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। चांचौड़ा, कुंभराज और मकसूदनगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। किसानों को मौसम के अनुसार खेती करने की सलाह दी गई है। इसी बीच समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल भी हुई। कुंभराज के बिरियाई गांव में रात्रि चौपाल और रोजगार सम्मेलन का आयोजन बीते दिनों किया गया। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और उनके समाधान के निर्देश दिए गए। 11 युवाओं को रोजगार के नियुक्ति पत्र भी इस मौके पर सौंपे गए। अब बात करते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों से जुड़ी आपत्तियों के निराकरण के लिए 13 से 15 जुलाई और 21 से 24 जुलाई तक विभिन्न बैठकों का आयोजन जिले में किया जाएगा। संबंधित आवेदिकाओं को अलग से सूचना भेजी जाएगी और सभी को तय समय पर उपस्थित रहने को कहा गया है। खेती किसानी की बात करें तो ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10 अगस्त तक की जाएगी। जिले में इसके लिए 4 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। पंजीकृत किसान स्लॉट बुकिंग के अनुसार अपनी उपज बेच सकते हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सर्पदंश से बचाव की सलाह जारी की है। अधिकारियों ने कहा कि सांप काटने पर झाड़ फूंक या घरेलू इलाज न करें। ऐसे मामलों में तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचे। समय पर इलाज मिलने से जान बचाई जा सकती है। शहर की यातायात व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सड़क दुर्घटनाएं रोकने और ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए भारी माल वाहनों के प्रवेश पर

0: समयबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है। अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ही ऐसे वाहन शहर में प्रवेश कर सकेंगे। दिन के समय नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए एक और अच्छी खबर है, प्रदेश के पर्यटन बोर्ड की पर्यटन क्विज 2026 प्रतियोगिता के लिए स्कूल 25 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता 7 अगस्त को होगी। विजेता टीम राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी और सफल टीमों को निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान जिले में 1,67,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा बीते दिनों पिलाई गई, जिसके लिए 1,513 पोलियो बूथ बनाए गए थे। स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर भी लोगों को जागरूक किया। वहीं दूसरी तरफ स्वनिधि महोत्सव में पथ विक्रेताओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। इसी दौरान सिंघाड़ी रोड पर आधुनिक फल एवं सब्जी मंडी के निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है, बीना गुना रुठियाई मेमू एक्सप्रेस सेवा शुरू हो गई है। इस नई ट्रेन से विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। जिले में युवा संगम कार्यक्रम में बीते दिनों 269 युवाओं ने पंजीयन कराया, जिनमें से 191 युवाओं को निजी कंपनियों ने रोजगार के ऑफर लेटर प्रदान किए। इसके साथ ही कई हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए ऋण और आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। और अंत में एक जरूरी अपील, जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री साझा करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी खबर, फोटो या वीडियो को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। गुना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे गुना जिले की चिट्ठी, आलेख रोहित गोस्वामी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्स पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर पर, साथ ही एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:05:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम की पहली फरमाइश है आप सभी की। आप हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अलतमश खत्री, रमेश कौड़, शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगावा से इसहाक लोलामानी, उमर कासमी और अयुब शेरी, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायल, प्रथमेश देशमुख, सर्वद देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी और हर्षता देशमुख, कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि, ग्राम संदलपुर आतरी से कालीचरण यादव, चांदनी यादव, उर्मिला देवी यादव और दीपक यादव, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर लता मंगेशकर का गाया शंकर महादेवन का संगीत, फिल्म दुश्मन से ये गीत।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे दो आंखें बारह हाथ फिल्म से ये गीत। इस गीत को लिखा था भारत व्यास ने, संगीत था वसंत देसाई का, गायक कलाकार थी लता मंगेशकर। पसंद करता थे आप सभी, आप हैं नागपुर महाराष्ट्र से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव, छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले, स्वराज विराज, गांव निम्नाबाद, जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, विजय तायड़े, अमोल तायड़े, जिगांव विदर्भ से बसंत राव भोजने, पी एस नवाकर, निवृत्ति आडोकर, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रसारित हो रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। पुनः सुनिए 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है आप सभी की, आप हैं एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्भई, तालुका सिल्लौड़, जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोटके, गांव कैरो, जिला तरन तारण पंजाब से गुरुदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोतरा गुरशबद, कुलम रोड, हरगोबिंद नगर, नवा शहर से सुरिंदर संधु, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीक्षा और मैक्स संधु, जैन मंदिर वाली गली कोरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी, राजकोट गुजरात से रश्मि, झरना, भरत कुमार, नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर खुश नसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, साहिबा मुजावर, मिखाइल जैनव मुजावर, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर महेंद्र कपूर और मनहार को कल्याण और आनंद के संगीत के साथ फिल्म पूरब और पश्चिम में।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में एआर रहमान का संगीत, जावेद अख्तर का लिखा फिल्म लगान से ये गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास संदेश आया था मारहरा दरवाज़ा एटा से नबीन हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल, अनम, यशफ और सरीद वारसी। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान, सबीहा अंजुमन खान। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैज़ल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मुरहेकर। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला और विशाल नवाकर। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरुशब्द सिंह राहुल। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, निशा। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद फजान, फरहान, समीरा, आजमीन और गुड़िया। चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, कुमारी साहू, इंद्रियाणी, माया। रोहिदास चौक पंढरपुर शहर से सुनीता शिंदे, यशराज, प्रशांत, ऋषि और कृष्णा घोटके। पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत, भरत और कमल साहनी। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। फिर से सुनिए 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम में अगला गीत हमने शामिल किया है फिल्म LOC कारगिल से। इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने, गायक कलाकार हैं सोनू निगम और इस गीत को शब्द दिए हैं जावेद अख्तर ने। पसंद करता हैं आप सभी, आप हैं फुल चिंचौली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुबैया, सुमान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानुबी और बादशाह मुलानी। जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, देवाशी, मेघाराशि, अनुराग मोहन। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोदपुरी। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी। साथ ही साथ हमें संदेश भेजा है गनगोला दातागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, साबरीन,

शाहबाज, सैफ खान, ईशान, आजम और फरहान अरहान। आराधना रेडियो श्रोता संघ मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, पी एस नवाकर बुलथाणा महाराष्ट्र से, राजू माठे, संतोष काले, गजानन सालोकर, सुरेश भिषे पाटिल, देवेंद्र भटकर, प्रकाश दांडगे गांव कुम्हेरहेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सादाब और आदिम। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म एलओसी कारगिल से ये गीत।

अभी आपने सुना फिल्म द बर्निंग ट्रेन से ये गीत। इस गीत को लिखा था साहिर ने, संगीत था आर डी वर्मन का, गायक थी सुषमा श्रेष्ठ और पद्मिनी। पसंद करता थे आप सभी आप हैं सदर बाजार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा, शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से, डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, समर, राज, आर्यन, आरोही, ऐशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल और सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। आडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा। आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। श्रोताओं, यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है फिल्म स्वदेश से। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है ए आर रहमान का, गायक भी ए आर रहमान ही है। फरमाइश करता है।

आप सभी, आप हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना भगत, ग्राम बग बुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरे नेताम, कुसुम नेतान, शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत मक्कड़ और कमल साहनी। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म स्वदेश का ये गीत।

श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में आज की अंतिम फरमाइश है फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह से। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है AR रहमान का, गायक हैं सोनू निगम और हरिहरन। फरमाइश करता है आप सभी, आप हैं। बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा हाशमी, तौसीफ, तैमूर और कलीम अंसारी। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येन कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। तहसील रोड गंज डुंडवारा से KH रही, गुड़िया बेगम, कमील प्रेमी और हमाल जमील।

हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से खिल्लू परवेज़, इमरान अनास, नवाजिश शेख शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह का ये गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है यार रहमान का, गायक हैं हरिहरन और सोनू निगम।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले की जाएंगी। श्रोताओं, प्रातः 11 से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और डेटा सेंटर तथा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। भोपाल में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डों में 6,330 पशुपालकों से संपर्क किया जाएगा। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में जनजाति चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी 30 जुलाई तक संचालित रहेगी और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 16 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिससे तेज बारिश की संभावना है। आज 22 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित कई जिलों में धूप खिली रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अदनान सामी, शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म माय नेम इज़ खान का गीत। गीत निरंजन का था और इसे संगीत से सजाया था शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए फिल्म मौसम का गीत हंसराज हंस की आवाज़ में। इरशाद कामिल के बोल हैं और संगीत है प्रीतम का।

अनजाना अनजानी इस फिल्म का गीत सुनिए राहत फ़तेह अली खां और साथियों की आवाज़ों में। गीत विशाल ददलानी का है और संगीत है विशाल शेखर का।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, आवाजें हैं आशा भोसले और येसुदास की, और फिल्म का नाम है अलग अलग।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा था अनजान ने और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए आरती मुखर्जी की आवाज़ में फिल्म मासूम का गीत। बोल गुलजार के हैं और संगीत है आर डी बर्मन का।

मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म सीमा का गीत। गीत शैलेंद्र ने लिखा था और इसे संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अब्दुल्ला।

दिल एक मंदिर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए इस फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हमद एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है। प्रतियोगिता जिला स्तर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। दतिया उपचुनाव में टिकट कटने के बाद प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। श्री मिश्रा ने कहा कि किसी का कद पार्टी से बड़ा नहीं होता। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है। प्रदेश के करीब 60% हिस्से से मानसून के बादल गायब हैं। अगले 5 दिन तक कहीं भी भारी

0: भी बारिश के आसार नहीं है और फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए टीमें तय हो चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा, जिसका प्रसारण भारतीय समयानुसार 12:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, इसमें आपके पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम पूरी करते हैं और पहला पत्र शामिल कर रहे हैं रेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश, कार्तिक, देविका कुमारी चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी और खुशी वाणी की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की। तीसरी कसम फिल्म का गीत मुकेश का गाया हुआ, शैलेंद्र ने बोल लिखे हैं, शंकर जयकिशन की धुन है।

अगला गीत आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ मुकेश ने गाया है। फिल्म का नाम है धर्म करम। सुनना पसंद किया है कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। कांचल पुणे से महेश हजारे, मितांशु हजारे, आदित्य हजारे। इचलकरंजी महाराष्ट्र से वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे और उनके परिवार के सदस्य।

ये चिट्ठी आई है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की पसंद है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष की। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री की। सुनना पसंद किया है आदमी फिल्म का गीत मोहम्मद रफी का गाया हुआ। शकील बदायनी ने गीत रचना की है और धुन बनाई नौशाद ने।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं उपाध्याय नगर। देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा की। मिंडकी रोड से रांगू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत और अभिषेक कुमावत की। राजाबाग नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन और मुकेश महाजन की। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया। कवर कॉलोनी बड़वाहा से श्री प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति श्रीमानी और शिवानी श्रीमाली और

राष्ट्र माली की घंटा चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया की। बहु बेगम फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में है। साहिर के बोल हैं और रोशन की धुन।

अगले गीत की फरमाइश शामिल कर रहे हैं शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव की, अमरपुर पंडरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी और दिशा और लभी श्रीवास्तव की, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर की, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना और निवान शर्मा की, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु गोलू और सूरज कुमार ढाकसे की पसंद है, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये की, सुनना पसंद किया है उपकार फिल्म का गीत मन्ना डे का गाया हुआ, इंदिवर ने गीत लिखा है, कल्याण जी आनंद जी की धुन है।

शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मुन्ने खां का सारंगी पर बजाया राग पूरिया धनाश्री।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुन्ने खाका सारंगी पर बजाया राग पूरिया धनाश्री। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हमद एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार साझा करेंगे। नमो ऐप और MyGov पोर्टल के जरिए सुझाव दिए जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव का फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमी कंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह अब से कुछ देर में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी दोपहर करीब 2:30 बजे नामांकन दाखिल करने निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। आशुतोष तिवारी का नॉमिनेशन कराने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी दतिया जा रहे हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डों में 6,330 पशुपालकों से संपर्क किया जा रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 16 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है जिससे तेज बारिश की संभावना है। आज 22 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित कई जिलों में धूप खिली रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की है।
1: श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा। श्रोताओं, अच्छा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने रसोई और घर को जितना हो सके केमिकल फ्री बनाना चाहिए। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड की बजाय ताज़ा घर का भोजन खाएं। सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी या ताज़े फलों का रस अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। मौसमी फल और हरी सब्जियों को अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएं। मैदा, अत्यधिक चीनी और जंक फूड के सेवन से बचें। भोजन बनाने के लिए ताज़ी भोजन सामग्री और पारंपरिक मसालों का उपयोग करें। प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म भोजन रखने से बचें। स्टील, कांच और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए, सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोता सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। वक्त हो गया है भेंट वार्ता का। आइए अब सुनवाते हैं आयुर्वेद और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर ऋषि मिश्रा से मनीष कछभिया जी की बातचीत।
1: श्रोता नमस्कार। आयुर्वेद से हम सभी परिचित है, यह भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक है। आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद किस प्रकार कार्य करता है और इसमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित है डॉक्टर ऋषि मिश्रा। ऋषि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: ऋषि जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या है और यह किस तरह से काम करती है।
2: यह चिकित्सा पद्धति सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो कि पुराने समय में भी बहुत लाभदायक थी और आज के समय में भी बहुत लाभदायक है
1: जी।
2: इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वह है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम। इसका मतलब है हम स्वस्थ व्यक्तियों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी।
2: और साथ ही अगर कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसके रोग का निर्मूलन कैसे पकड़ सकते हैं
1: जी जी जी।
2: इसमें आपको क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे
1: जी।
2: हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने आप को रोगों से और क्योर कैसे कर सकते हैं
1: जी। ऋषि जी आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है तो लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, आयुर्वेद के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है इन बीमारियों को
2: जी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और अभी के समय में लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम क्यों रोगी हो रहे हैं
1: जी।
2: और यह लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज ज्यादा अपने को देखने में आ रही है, जैसे मोटापा हो गया, बीपी हो गया, ये बीमारियां ज्यादा देखने में आ रही है और ये बहुत कॉमन होती जा रही हैं
1: जी।
2: इन बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है और हमको इसमें ऋतुचर्या, दिनचर्या का पालन करना चाहिए। ऋतुचर्या और दिनचर्या के पालन करने से हमारे जो रोग हैं ये हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनकी तीव्रता को भी कम किया जा सकता है
1: जी। डॉक्टर साहब, ये आपने बात करी जैसे मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की, तो ये जो डायबिटीज ब्लड प्रेशर है क्या इसका इलाज भी संभव है आयुर्वेद में?
2: हाँ जी बिल्कुल, इसका वर्णन है आयुर्वेद में। डायबिटीज को हम मधुमेह कहते हैं जो कि प्रमेह के अंतर्गत बताया गया है और उसके अंदर उसके कारणों को भी बताया है और उसका निदान भी बताया है, इलाज भी बताया है
1: जी। डॉक्टर साहब, आजकल लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है तो स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो उसमें आजकल जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह है मानसिक स्वास्थ्य का भी, तो क्या मानसिक स्वास्थ्य का भी इस चिकित्सा पद्धति में इलाज संभव है?
2: हाँ जी बिल्कुल है, और हमारे प्रकृति में ऐसी कई वनौषधियां हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। जैसे आपको शंख पुष्पी हो गई, ब्राह्मी हो गई, जटामानसी हो गई, ऐसे कई मेद्य द्रव्य बताए गए हैं जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा लाभ प्राप्त करवाते हैं। साथ ही आयुर्वेद में एक पंचकर्म चिकित्सा भी है जिसमें शिरोधारा प्रक्रिया यह इसके लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें शिरोवस्थि होती है, शिरो अभ्यंग होता है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज है
1: जी जी।
2: आयुर्वेद में योग का भी वर्णन है, योग में आपको ब्राह्मी प्राणायाम होता है, इससे भी लाभ मिल सकता है। तो मतलब बहुत तरीके से हम मानसिक चिकित्सा इसमें हम दे सकते हैं
1: बिल्कुल
2: मानसिक रोगों में।
1: डॉक्टर साहब, अब जैसे आपने बात करी पंचकर्म की, तो आजकल पंचकर्म क्रिया का भी नाम आयुर्वेद में बहुत ज्यादा सुना जा रहा है, तो क्या यह पंचकर्म जो प्रक्रिया है उससे किसी भी तरह

0: के पेशेंट को किस तरह का लाभ मिलता है इस पद्धति के द्वारा?
1: पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है। हम आयुर्वेद में ये देखते हैं कि रोगी के अंदर कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, जिसमें वात पित्त कफ हमारे मुख्यतः दोष माने गए हैं और ये अपने सही प्रमाण से ऊपर रहते हैं तो वो दोष के लक्षण दिखाते हैं। तो इन दोषों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो पंचकर्म है। इसमें कुछ हद तक हम शमन चिकित्सा के रूप में या रोगों को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए भी प्रयोग करते हैं और ये आत्यायिक चिकित्सा के रूप में भी काम आती है, मतलब एक्यूट पेन रिलीफ करने में भी मदद करती है। पंचकर्म को हम मुख्यतः तीन भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पूर्व कर्म, दूसरा होता है प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में आता है स्नेहन स्वेदन, जिसमें हम ऑयलिंग करते हैं, स्टीमिंग करते हैं, उसका भी बहुत सारा अलग विस्तृत वर्णन है जिसमें अलग अलग रोग के हिसाब से हम उसको प्रयोग में लाते हैं। मुख्यतः प्रधान कर्म में आते हैं जो पांच मुख्य कर्म है, उसमें वमन आता है, मेडिकेटेड वोमिटिंग, दूसरे नंबर पर आता है विरेचन, मेडिकेटेड लूज मोशन, फिर तीसरे नंबर पर आती है बस्ती चिकित्सा जिसमें हम ऑयल और काढ़े को एनएस में इंट्रोड्यूस करते हैं, चौथे नंबर पर आता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण के अंदर हम ब्लड लेटिंग करते हैं, कहीं किसी पार्ट में अगर हमारे को कहीं ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है या वहां घाव बन रहा है तो उस जगह से हम दूषित रक्त को निकालते हैं। पांचवें नंबर पर आता है नस्य प्रक्रिया। नस्य प्रक्रिया यानी नाक में मेडिकेटेड ऑयल को, कुछ चूर्ण को या काढ़े को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक चिकित्सक के देखरेख में और वो प्रक्रिया हमको बहुत अच्छा लाभ देती है। ऐसे ये पांच मुख्य कर्म पंचकर्म में आते हैं। इसके बाद पश्चात कर्म होता है, जब भी हम कोई कर्म कर रहे होते हैं तो उसके बाद में जो पश्चात कर्म में धूमपान वगैरह होता है, संसर्जन कर्म होता है, उसको फॉलो किया जाता है।
0: जी जी, तो ये आपने पंचकर्म की बात करी, तो पंचकर्म करने के लिए क्या पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना अनिवार्य है या वह घर में रहकर भी इस चिकित्सा पद्धति का लाभ ले सकते हैं?
1: नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको चिकित्सक की देखरेख में ही कराना है क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी आसान नहीं है। इसमें चिकित्सक उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि उसके वाइटल्स क्या है, उसकी स्थिति क्या है, क्या वो प्रोसीजर के लायक है या नहीं है, इस प्रकार से वो डिजाइन करता है एक चिकित्सक। तो इसलिए इसको हॉस्पिटल में कराना या एक कुशल चिकित्सक की देखरेख में कराना ज्यादा उचित होगा।
0: जी जी जी, अब जैसे आपने बात करी पंचकर्म की, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पद्धति में खानपान की भूमिका क्या रहती है?
1: हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो आहार हमारी सबसे पहली चिकित्सा है। आहार से ही हम अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। अगर जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले लें कि हमको एसिडिटी हो रही है, हमको जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, हम उसमें अगर तीखे पदार्थ लेते हैं तो वो उसको और एग्रीवेट करता है। उसी के बदले में अगर हमने उसमें थोड़ा सा मधुर द्रव्य दिया तो उसको सबसाइड कर देगा। तो आहार का तो बहुत अच्छा वर्णन है आयुर्वेद में और आहार का महत्व भी बहुत कुछ है इसमें।
0: जी जी जी, हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि आजकल की जो बदलती हुई जीवन शैली है उसमें आहार का विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि आहार के माध्यम से जैसा भी हमें डॉक्टर साहब ने भी बोला, काफ़ी हद तक हम चीज़ों को या बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो यह है कि क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी जारी रख सकते हैं?
1: ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। आज के दौर में देखने में आता है हमारी प्रैक्टिस लाइन में कि रोगी पहले से ही कुछ मेडिकेशन करता हुआ आ रहा है और वो डिपेंडेंट भी है उसके ऊपर। अब वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा स्विच हो जाऊं या मैं उसमें कुछ और अधिक लाभ प्राप्त कर सकूं, तो बिल्कुल आयुर्वेद की उसमें मदद लेनी चाहिए और पैरेलल में आप बिल्कुल ले सकते हैं। अपने डॉक्टर को बता दीजिए और उनके संपर्क में रहिए और फिर आप टैपरिंग डोज में धीरे धीरे अपनी मॉडर्न मेडिसिंस को आप रिड्यूस करते जा सकते हैं और आयुर्वेद को आप लेते जाएं। ऐसे करके आपका स्वास्थ्य में अच्छा लाभ मिलेगा।
0: जी डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न जो जहन में आ रहा है वो यह आ रहा है कि आयुर्वेद के क्या कोई साइड इफेक्ट है?
1: इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा, देखिए किसी भी चीज की अगर अति मात्रा लेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। चाहे हम डे टू डे लाइफ में शक्कर ज्यादा खा रहे हो तो उसका भी हमको लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान होने लगेगा। ऐसे ही आयुर्वेद एक चिकित्सा है, इसको आपको उचित मात्रा में, उचित प्रमाण में अगर लेंगे तो लाभदायक है। अनुचित प्रमाण में ले रहे हैं और गलत तरीके से ले रहे हैं तो उससे फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा, कुछ नुकसान जरूर पहुंचेगा। जो कि आपको अगर चिकित्सक परामर्श देते हैं तो वो उस समय वर्णित करते हैं कि इसको इस तरीके से इस मात्रा में लेना है तो वो लाभदायक बनेगी।
0: जी जी जी, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आयुर्वेद में ऑपरेशन के माध्यम से भी इलाज संभव है किसी बीमारी का?
1: बिल्कुल, आपका सवाल बहुत

0: अच्छा है। आयुर्वेद सिर्फ औषधि सेवन करने की विधा नहीं है, इसके अंदर ऑपरेशंस भी बताए गए हैं। इसके जो आचार्य हैं वो आचार्य सुश्रुत हैं, जिनको मॉडर्न के डॉक्टर भी अपना फादर ऑफ सर्जरी मानते हैं
1: जी।
0: तो आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छा वर्णन किया है और हमारे यहाँ आज भी कई बीमारियों के ऊपर सर्जरी होती है, जैसे मुख्यतः पाइल्स के अंदर, भगंदर यानी फिस्चुला, इसके अंदर की जाती है सर्जरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मेडिसिन से पहले क्योर करने की कोशिश करते हैं, अगर ज़्यादा देर हो गई है और बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है डिजीज़, तो फिर सर्जरी भी की जाती है जिसमें क्षार सूत्र पद्धति से इलाज किया जाता है
1: जी। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को अक्सर देखा है कि वो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं बिना डॉक्टर के परामर्श के, स्वयं से ही दवाई ये सोच के ले लेते हैं कि शायद आयुर्वेद में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं बताना चाहूँगा कि ये सेल्फ मेडिकेशन की चिकित्सा विधा नहीं है, ये दिखती आसान है पर इसके अंदर बहुत कुछ अध्ययन करने की जरूरत होती है। हम एक औषधि के अंदर रस, गुण, वीर, विपाक सब कुछ देख रहे होते हैं और एक आयुर्वेद चिकित्सक अपने 5.5 साल की पढ़ाई करके एक बैचलर डिग्री प्राप्त करता है। आज के समय में इसमें स्पेशलाइजेशन होने लग गया है, इसमें MD होने लग गई है, तो स्पेशलाइजेशन होने से और क्वालिटी इनहेंस हुई है। तो सेल्फ मेडिकेशन लेने से कई गलतियां होने के चांसेस बनते हैं और जो कि रोगी को भोगने पड़ते हैं और फिर वो समय की भी मर्यादा है। अगर कोई रोगी अपने जितनी जल्दी डॉक्टर के पास में पहुंच जाता है तो रोग को ठीक करने में हमें समय कम लगता है और जितना समय ज्यादा गवा देता है उतने ही कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ में जुड़ जाते हैं तो फिर इलाज करने में देरी होने लगती है। तो बेहतर है कि हम सेल्फ मेडिकेशन करके टाइम वेस्ट ना करें और हम उसकी जगह पर चिकित्सक से परामर्श ले लें तो जल्दी समय मिलेगा इलाज करने का और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, जल्दी ठीक होने की बारी आ जाएगी
1: जी।
0: इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आज के दौर में इंटरनेट पर अवेलेबल हो गए हैं रील्स वगैरह जिसमें लोग अपना उधर से देख के सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जो कि हमारे प्रैक्टिस में देखने में आ रहा है। तो ये वही श्रोता है जो सेल्फ मेडिकेशन पर चले जा रहे हैं या वो किसी रील्स के कारण देख रहे हैं या ले रहे हैं दवाइयों को, यह अनुचित है। इसमें आप उस विंडो पीरियड, वो जो पीरियड है, जो शुरुआती पीरियड है जिसमें हम जल्दी ठीक कर सकते थे, वो गंवा देते हैं
1: जी
0: और फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर के लिए भी आप चुनौती बढ़ा रहे हैं और अपने लिए भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मुझे कहना है कि ये सेल्फ मेडिकेशन को तो बिल्कुल ना करें, हमारे आसपास चिकित्सक अवेलेबल हैं और उनको दिखा के आप चिकित्सा परामर्श लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा
1: जी। बहुत अच्छी बात की आपने और हम अपने तमाम श्रोताओं को यही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के जो दौर है उसमें बिल्कुल भी आप किसी तरह की रील को या किसी तरह की साइट पे जाकर स्वयं से उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, डॉक्टर है डॉक्टर से परामर्श लें और तभी आप अपना इलाज करें। कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि वह किस तरह से अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से?
0: आयुर्वेद एक आपको बहुत अच्छा साइंस मिला है और उस साइंस में क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव दोनों चीज़ें मेंशन है, तो आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से अच्छा ध्यान रख सकते हैं अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। मुख्यतः आहार पर अपना ध्यान रखना चाहिए, आज की तारीख में जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है और वही हमको नुकसान दे रही है। दूसरा, हमारी निद्रा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: उसको भी प्रॉपर लेना है, ये नहीं कि अपने कार्य के कारण आप निद्रा को प्रॉपरली ना लें तो फिर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी और आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो आहार और निद्रा पे विशेष रूप से ध्यान रखें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका कार्य क्षमता अच्छी रहेगी।
1: डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो बताई गई बातें हैं वह हमारे श्रोताओं के काम आएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने आयुर्वेद और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर ऋषि मिश्रा से मनीष गजभिया की ये बातचीत सुनी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है क्रम हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का, और इसी क्रम में आज का विषय है कॉन्टैक्टलेस हेल्थ टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है, एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसके माध्यम से रोगी की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बिना सीधे संपर्क के प्राप्त की जा सकती है। इसका पर्पस हेल्थ सर्विसेज को अधिक सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक और सुलभ बनाना है। इस टेक्नोलॉजी में सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, मोबाइल ऐप, स्मार्ट उपकरण और वायरलेस तकनीक का उपयोग करके रोगी की निगरानी, जांच और परामर्श किया जाता है। इसमें डॉक्टर को मरीज से हर बार मिलने की आवश्यकता भी नहीं होती। वीडियो कॉल या फोन के माध्यम से मरीज डॉक्टर से परामर्श ले सकता है। वेयरेबल डिवाइसेस कॉन्टैक्टलेस हेल्थ टेक्नोलॉजी में स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड भी आते हैं, जो हृदय गति, रक्त में ऑक्सीजन और नींद और शारीरिक गतिविधियों की निगरानी करते हैं। संपर्क रहित थर्मामीटर में बिना छुए शरीर का तापमान का पता लगाया जा सकता है और घर बैठे रोगी के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी भी की जाती है। तो अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है हेल्थ टिप्स का। प्राकृतिक चीज़ों को अपने जीवन में उपयोग करें, तनाव कम करने के लिए योग का सहारा लें, बारिश में भीगने पर शरीर को अच्छी तरह सुखाएं। त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते, फंगस, संक्रमण या कोई समस्या लगातार बनी रहे तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें। बादलों के दिनों में भी बाहर जाते समय सनस्क्रीन का उपयोग करें। अपनाएं ऐसी छोटी छोटी आदतें जो आपको रखें स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान।

0: आशा है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिर मिलने के वादे के साथ डीजे आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा को इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की थी। समय है एक अंतराल का।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, एक सूचना है आपके लिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से बचें। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे केवल प्रमाणिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें। किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक संहिता 2023 अथवा प्रासंगिक विधि प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक

कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पीराजी मंडोर के गाय।

पीरा जी मंडोर के गाए मालवी लोकगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। यह है निर्गुण भजन।

पीराजी मंडोर के गाए इस निर्गुण भजन के साथ ही लोक संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम में अविनाश त्रिपाठी के गाए कुछ भजन। आरंभ कर रहे हैं तुलसीदास की इस रचना के साथ।

अविनाश त्रिपाठी के गाए भजन आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में। लीजिए अब सुनिए सूरदास जी की रचना

0: सूरदास की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे अविनाश त्रिपाठी के गाए कुछ भजन। ये प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है एक अंतराल का।
1: भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी यानी AIC द्वारा मध्य प्रदेश के आगरमालवा, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, भिंड, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला, मंदसौर, मऊगंज, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पांडुर्णा, पन्ना, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर, तुअर, ज्वार, कोदो कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग, उड़द की फसल का बीमा किया जा रहा है।
2: किसी भी प्रकार की जानकारी, मार्गदर्शन, आवेदन से जुड़ी सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है।
1: 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल हाय या नमस्ते लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलें, क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। सुरक्षित फसल, खुशहाल किसान। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया नया दौर फिल्म का गीत है। ओपी नैयर ने धुन बनाई है साहिर के बोल।

0: मन्ना दे और साथियों का गाया फिल्म श्री 420 का ये गीत था। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में आयोजित एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और जीसीसी निवेश पर मंथन होगा। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख टेक कंपनियां, निवेशक और नीति विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा के बल पर दुनिया में नई पहचान बना रहा है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश में कृषि, खनिज और वनों की पारंपरिक पहचान से

0: आगे बढ़कर डिफेंस ड्रोन, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में तेजी से अग्रसर है। एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और इंदौर के सुपर कॉरिडोर और भोपाल में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की।
1: इंदौर आईटी पार्क सुपर कॉरिडोर, इंदौर के सुपर कॉरिडोर में 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला अत्याधुनिक आईटी पार्क का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं जो जीसीसीएस आईटी डिजिटल सेवा कंपनियों को विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले की अवसंरचना उपलब्ध कराएगा। प्रदेश में सेमीकंडक्टर के खासकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए कौशल विकास, अनुसंधान, उद्योग सहयोग एवं क्षमताओं को प्रोत्साहित करेगा। यह सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी मैं घोषणा कर रहा हूं।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव मौजूद रहे। वहीं अब से कुछ देर बाद बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी नामांकन दाखिल करने निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। आशुतोष तिवारी का पर्चा भरवाने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंच रहे हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा चलाए जा रहे दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग के अधिकारी कर्मचारी पशुपालकों के घर पहुंचेंगे और नस्ल सुधार, पशु पोषण, टीकाकरण और सेक्स सॉर्टेड सिमिन के बारे में जानकारी देंगे। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 18 जुलाई तक चलने वाले 6 दिवसीय अभियान के दौरान नर्मदापुरम, बाबई, पिपरिया, वनखेड़ी, सुहागपुर, सिवनी, मालवा और केसला विकासखंड के 11,595 पशुपालकों परिवारों तक विभागीय अमला पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि सर्वांगीण विकास प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करता है। इससे राष्ट्र की प्रगति को नई दिशा मिलती है। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश इस प्रेरणादायक भावना के साथ भारत की क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इनमें कहा गया है कि महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित करना, युवा पीढ़ी की रक्षा और पोषण करना, राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का निरंतर कर्तव्य है। प्रदेश में मॉनसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। प्रदेश के करीब 60% हिस्से से मॉनसूनी बादल छट गए हैं, जिसके चलते अगले 5 दिनों तक कहीं भी भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। 16 जुलाई से एक नया मौसम का सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिससे प्रदेश में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुना, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, थार और अलीराजपुर जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में नगर पालिका द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाकर जल जनित और बैक्टीरिया जनित रोगों की रोकथाम करना है। मंडला जिला जेल में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में बंदियों की समस्याओं को सुना गया। जबलपुर मंडल के रेल मंडल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा ने जबलपुर पुणे वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कल जबलपुर से इटारसी के बीच औचक निरीक्षण किया। भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक रथ यात्रा कल आगरमालवा जिले के कारण में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया। तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को SI का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्रगिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
5: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
6: अपने दो वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कोई नहीं हुआ। अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
7: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
3: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकि नगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
8: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हॉर्मुज जलमध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
3: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

शैलेंद्र का लिखा गीत आपको सुनवाते हैं। बंदनी फिल्म का यह गीत है, स्वर और संगीत एसडी बर्मन का।

कटी पतंग फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर का गाया हुआ, आर डी बर्मन की धुन थी और आनंद बख्शी ने गीत लिखा था। आनंद फिल्म का यह गीत है, मन्ना डे ने गाया है, योगेश ने गीत लिखा है, सलिल चौधरी की धुन है।

0: चले जाए अकेले कहां जिंदगी।
1: मन्ना डे के गाए फिल्म आनंद के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव का फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमी कंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने आज नामांकन दाखिल किया। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डों में 6,330 पशुपालकों से संपर्क किया जा रहा है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हमद एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। और लॉर्ड्स में खेले जा रहे एकमात्र महिला क्रिकेट इस मैच में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ जीत के लिए 4 विकेट की जरूरत है। 457 रन के लक्ष्य के जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बनाए थे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको संध्याकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। शाम 6:40 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम आजकल प्रसारित करेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन का समय रहेगा शाम 6:45 का। कार्यक्रम सुर्खियों में रात्रि 8:00 प्रसारित करेंगे। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 पर मुन्ने खां का सारंगी पर बजाया राग पूर्य धनाश्री आप सुनेंगे। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आज का आकर्षण होगा लोक रंग। ये थी जानकारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3:01 और 35 सेकंड हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा समाप्त होती है। शाम 5:00 हम अपने कार्यक्रम

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02 होते हैं। नीचे प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे पीराजी मंडोर के गाए कुछ निर्गुण भजन।

पीराजी मंडोर के गाए इस निर्गुण भजन के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है अविनाश त्रिपाठी के गाए कुछ भजन। आरंभ कर रहे हैं तुलसीदास की इस रचना के साथ।

सूरदास की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज आप सुन रहे थे अविनाश त्रिपाठी के गाए कुछ भजन। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। रेशमा का गाया हीरो फिल्म का ये गीत है। आनंद बख्शी ने लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है।

श्यामलाल मित्रा के संगीत निर्देशन में इंदिवर ने लिखा था यह गीत अमानुष के लिए, किशोर कुमार ने गाया था। गुलजार का लिखा यह गीत भूपेन हजारिका ने स्वरबद्ध किया है, लता मंगेशकर ने गाया है, रुदाली फिल्म के लिए।

0: बेवफा। श्रोताओं खेद है कि समय अभाव के कारण हम ये गीत आपको सुनवा नहीं पा रहे हैं। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार साझा करेंगे। नमो ऐप और माई गव पोर्टल के जरिए सुझाव दिए जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में प्रदेश में सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और इंदौर के सुपर कॉरिडोर तथा भोपाल में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने पर्चा दाखिल किया। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डों में 6,330 पशुपालकों से संपर्क किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 16 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिससे तेज बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

माहौल का परवरदा हूँ लेकिन नफरत ज़दा माहौल का परवरदा हूँ लेकिन खुश हूँ कि मोहब्बत मेरा मसलक है अभी तक, खुश हूँ कि मोहब्बत मेरा मसलक है अभी तक, नफरत ज़दा माहौल का परवरदा हूँ लेकिन खुश हूँ कि मोहब्बत मेरा मसलक है अभी तक। ये शेर देखें कि तुम जिससे चुराती थी खनकते हुए सिक्के, तुम जिससे चुराती थी खनकते हुए सिक्के, हाँ हाँ मेरे बचपन की वो गुल्लक है अभी तक, हाँ हाँ मेरे बचपन की वो गुल्लक अभी तक, तुम जिससे चुराती थी खनकते हुए सिक्के, हाँ हाँ मेरे बचपन की वो गुल्लक है अभी तक। ये शेर भी देखें कि ख्वाबों में तो मुद्दत से सुलगते हैं मनाजिर, ख्वाबों में तो मुद्दत से सुलगते हैं मनाजिर, आंखों में मगर सुरमई ठंडक है अभी तक, आंखों में मगर सुरमई ठंडक है अभी तक, ख्वाबों में तो मुद्दत से सुलगते हैं मनाजिर, आंखों में मगर सुरमई ठंडक है अभी तक। ये शेर भी देखें खुसूसी तौर पर कि बाकी तो हर एहसास मुकर ही चुका मुझसे, बाकी तो हर एहसास मुकर ही चुका मुझसे, एक दर्द है जो मेरा समर्थक है अभी तक, एक दर्द है जो मेरा समर्थक है अभी तक, एक दर्द है जो मेरा समर्थक है अभी तक। ये शेर के ये शमए फरोजा व कलमदान ये दीवान, ये शमए फरोजा व कलमदान ये दीवान, तहजीब का मरकज मेरी बैठक है अभी तक, तहजीब का मरकज मेरी बैठक है अभी तक, ये शमए फरोजा व कलमदान ये दीवान, तहजीब का मरकज मेरी बैठक है अभी तक। जल्दी है नवेद उनसे मुझे मिलने की लेकिन एक हद अदब में मेरी दस्तक है अभी तक, एक हद अदब में मेरी दस्तक है अभी तक। गजल का मतलब पेश खिदमत है कि जाने तो दो जबर से उजालों को जेर तक, जाने तो दो जबर से उजालों को जेर तक, दहलीज से चराग जलेंगे मुंडेर तक, दहलीज से चराग जलेंगे मुंडेर तक, जाने तो दो जबर से उजालों को जेर तक, दहलीज से चराग जलेंगे मुंडेर तक। और इस बात पर भी अहले सियासत बयान दे, इस बात पर भी अहले सियासत बयान दे, आंखों में कोई ख्वाब रखे कितनी देर तक, आंखों में कोई ख्वाब रहे कितनी देर तक। ये शेर भी देखेंगे, जंगल में नेमतों की अलग ही बहार है, जंगल में नेमतों की अलग ही बहार है, तेंदू अचार महुआ बहेड़े से बेर तक, तेंदू अचार महुआ बहेड़े से बेर तक, जंगल में नेमतों की अलग ही बहार है। ये शेर भी कि ये नस्ल नोहे हिजर में मरती नहीं है, ये नस्ल नोहे हिजर में मरती नहीं है, ये जानती है जीना सनम के बगैर तक, ये जानती है जीना सनम के बगैर तक, ये नस्ल नोहे हिजर में मरती नहीं है, ये जानती है जीना सनम के बगैर तक। और तुम किस लिए बहादुरी दिखलाने आ गए, तुम किस लिए बहादुरी दिखलाने आ गए, बुजदिल बने हुए हैं यहाँ तो दिलेर तक, बुजदिल बने हुए हैं यहाँ तो दिलेर तक। और ये शेर भी देखें कि ये वो शिकारी हैं जिन्हें जल्दी नहीं नवेद, ये वो शिकारी हैं जिन्हें जल्दी नहीं नवेद, ये धीरे धीरे आएंगे बकरी से शेर तक, ये धीरे धीरे आएंगे बकरी से शेर तक, जाने तो दो जबर से उजालों को जेर तक, दहलीज से चराग जलेंगे मुंडेर तक। गजल का मतलब पेश खिदमत है कि किसे रंजो अलम की रोशनी में, किसे रंजो अलम की रोशनी में खुशी मिलती है गम की रोशनी में, किसे जो अलम की रोशनी में खुशी मिलती है गम की रोशनी में। ये शेर भी देखें, न जाने कितनी जंगें लड़ चुका हूँ, न जाने कितनी जंगें लड़ चुका हूँ इसी कागज़ कलम की रोशनी में, इसी कागज़ कलम की रोशनी में, न जाने कितनी जंगें लड़ चुका हूँ इसी कागज़ कलम की रोशनी में, मुझे आहों के चेहरे दिख रहे हैं, मुझे आहों के चेहरे दिख रहे हैं तेरे जुल्मों सितम की रोशनी में, तेरे जुल्मों सितम की रोशनी में, मुझे आहों के चेहरे दिख रहे हैं तेरे जुल्मों सितम की रोशनी में। उन न जाने कब ये मेरे देशवासी, शेर पर तवज्जो फरमाए कि न जाने कब ये मेरे देशवासी चलेंगे मय से हम की रोशनी में, चलेंगे मय से हम की रोशनी में, न जाने कब ये मेरे देशवासी चलेंगे मय से हम की रोशनी में। ये शेर भी के इबादत को की मत पर रखिए, इबादत को किसी की मत पर रखिए कभी खाली शिकम की रोशनी में, इबादत को किसी की मत पर रखिए, इबादत को किसी की मत रखिए कभी खाली शिकम की रोशनी में। और ये शेर खसूसी तौर पर तवज्जो के काबिल कि मुसलसल तो नहीं रह सकता जगमग,
مسلسل تو نہیں رہ سکتا جگمگ، کوئی جھوٹی قسم کی روشنی میں، کوئی جھوٹی قسم کی روشنی میں، مسلسل تو نہیں رہ سکتا جگمگ، کوئی جھوٹی قسم کی روشنی میں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، سمجھ لیتے ہیں خود کو لوگ سورج، سمجھ لیتے ہیں خود کو لوگ سورج، نوے دہلے کرم کی روشنی میں، نوے دہلے کرم کی روشنی میں، سمجھ لیتے ہیں خود کو لوگ سورج،

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। शोर फिल्म का यह गीत है, मन्ना डे और महेंद्र कपूर ने इसे गाया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इंद्रजीत सिंह तुलसी ने इसे लिखा।

आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी आराधना, स्वर और संगीत एसडी परमन का था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत किशोर कुमार ने गाया मजबूर फिल्म के लिए।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म दो बदन में। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेब्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार साझा करेंगे। नमो ऐप और मायगव पोर्टल के जरिए सुझाव दिए जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में प्रदेश में सेमी कंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और इंदौर के सुपर कॉरिडोर और भोपाल में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने पर्चा दाखिल किया। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डो में 6330 पशुपालकों से संपर्क किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 16 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिससे तेज बारिश की संभावना है। आज 22 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित कई जिलों में धूप खिली रही। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब युवा श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।
1: दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त प्रियंका लाला। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जल संरक्षण और युवा दायित्व विषय पर और साथ ही चर्चा करेंगे डिजिटल डिटॉक्स टूरिज्म के बारे में। और दोस्तों, साथ ही हमारे युवा साथियों के लिए होगी रोजगार सूचना भी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन हमारे घर के नल में पानी नहीं आएगा तो क्या होगा? न खाना बन पाएगा, न नहाना होगा और न ही रोज़मर्रा के दूसरे काम होंगे। दोस्तों, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें से सिर्फ 97% पानी खारा है। पीने योग्य मीठा पानी बहुत ही कम है, इसलिए हमें आवश्यकता है जल संरक्षण की। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि जल संरक्षण सिर्फ सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन जल संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी है और इसकी शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। दोस्तों, आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, किसी भी समाज में बदलाव की शुरुआत अक्सर युवाओं से होती है। आज का युवा नई सोच रखता है, नई तकनीक अपनाता है और लोगों तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकता है। अगर युवा चाहें तो अपने घर, कॉलेज और आसपास के लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं, जैसे वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में लोगों को जानकारी देकर और पानी के महत्व के बारे में लोगों को बताकर। इससे लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। अगर हर युवा यह तय कर ले कि वह अपने घर में पानी की बर्बादी नहीं होने देगा तो लाखों परिवारों की आदतें बदल सकती हैं। अगर हर छात्र अपने कॉलेज में जल संरक्षण का संदेश फैलाए तो पूरा परिसर जागरूक हो सकता है, यानी एक जागरूक युवा हजारों लोगों को प्रेरित कर सकता है। दोस्तों, याद रखें कि अगर हम आज पानी बचाएंगे तभी हमारा कल सुरक्षित रहेगा।

दोस्तों आइए अब चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स टूरिज्म की। दोस्तों डिजिटल डिटॉक्स टूरिज्म आपको आप सभी को सुनने में नया लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। डिजिटल डिटॉक्स यानी कुछ समय के लिए मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन से दूरी बनाना। और डिजिटल डिटॉक्स टूरिज्म यानी ऐसी यात्रा जहां कुछ समय के लिए मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूरी बनाकर प्रकृति, परिवार और स्वयं के साथ समय बिताया जाए। मतलब कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेके असली दुनिया और प्रकृति से दोबारा जुड़ने का मौका। दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है कि हम घूमने कहीं भी जाते हैं, हमारा आधा समय अच्छी फ़ोटो लेने और उसे पोस्ट करने में ही निकल जाता है। कई बार हम खूबसूरत जगहों का आनंद लेने के बजाय सिर्फ कैमरे की स्क्रीन ही देखते रह जाते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी पहाड़ी गांव, जंगल, नदी किनारे या शांत प्राकृतिक जगह पर घूमने गए हैं। सुबह पक्षियों की आवाज़ से आपकी नींद खुलती है, मोबाइल की घंटी नहीं प्रकृति की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आप योग करते हैं, टहलते हैं, स्थानीय लोगों से मिलते हैं, उनका खान पान और संस्कृति जानते हैं, शाम को डूबते सूरज को देखते हैं, लेकिन कैमरे की स्क्रीन से नहीं अपनी आँखों से। यानी ये एक ऐसा सफ़र है जो जहाँ नो नेटवर्क जोन ही आपका सबसे बड़ा कंफर्ट जोन बन जाता है। और दोस्तों यही है डिजिटल डिटॉक्स का असली अनुभव। दोस्तों अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या इसके लिए कोई महंगे रिसॉर्ट में जाना ही ज़रूरी है, तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों आप अपने शहर के पास किसी पार्क, झील, जंगल, गांव या पहाड़ी क्षेत्र में एक दिन का डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए, पचमणि के घने जंगल, सतपुड़ा के शांत नज़ारे या अमरकंटक की वादियों में जब भी आप जाते हैं और फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने बैग में डाल देते हैं, तो वो जो सुकून मिलता है बस यही है डिजिटल डिटॉक्स टूरिज़्म। दोस्तों हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों आइए अब जानते हैं डिजिटल डिटॉक्स टूरिज्म के महत्व के बारे में। दोस्तों आज के युवाओं पर पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं, करियर का दबाव पहले से ही कहीं ज़्यादा है। ऐसे में अगर हम कुछ समय डिजिटल दुनिया से दूर रहें तो हमारा मन शांत रहता है, हमारे ध्यान लगाने की क्षमता भी बढ़ती है, हमारी रचनात्मक सोच विकसित होती है, समय का सही उपयोग होता है और सबसे ज़रूरी बात, हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ वास्तविक समय बिता सकते हैं। और यही कारण है कि आज कई लोग अपनी छुट्टियों में डिजिटल डिटॉक्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। दोस्तों तकनीक हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमें उससे दूर नहीं जाना है बल्कि उसका संतुलित उपयोग करना है। याद रखिए, छुट्टियां सिर्फ नई जगह देखने के लिए नहीं होती बल्कि खुद को फिर से खोजने का एक अवसर भी होती हैं।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में अब समय हो गया है रोजगार सूचना का। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल 6,557 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ITI, डिप्लोमा या संबंधित तकनीकी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी 29 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत अधिसूचना एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए rrbapply.gov.in तथा rrbcdg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज का युववाणी कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा और इन विषयों पर कुछ नई जानकारी भी ज़रूर मिली होगी। इसी के साथ मुझे आपकी रेडियो साथी प्रियंका लाला को दीजिए इजाज़त।
1: ये था युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युववाणी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों बाद

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
8: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
9: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
7: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
8: आकाशवाणी है ना,
10: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
8: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
7: शाम सुहानी हो,
8: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
7: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
8: सफर में
7: आपके साथ
8: आकाशवाणी।

और अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत। इसे लिखा है इंदिवर ने और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और अब हम आपको सुनवाते हैं अमर पीर अमर प्रेम फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन।

मेरे हम सफर। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना आनंद बख्शी के हैं और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी देर बाद।

नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार साझा करेंगे। नमो ऐप और माईगव पोर्टल के जरिए सुझाव दिए जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में प्रदेश में सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और इंदौर के सुपर कॉरिडोर और भोपाल में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने पर्चा दाखिल किया। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डों में 6,330 पशुपालकों से संपर्क किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 16 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिससे तेज बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
1: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
1: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी राम दुलारी जी का।
2: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय, प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
1: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
2: श्रोताओ इसका जवाब जान लेते हैं। मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुँचाते हैं।
1: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
2: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
1: जी अशोता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
2: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: 8800440559 पर जो हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
2: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
3: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
4: फसल बह गई।
5: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
6: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
4: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत। आहा,
6: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। आहा, कितना साफ पानी है।
5: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के

0: पेड़ भी काटे जाने लगे।
1: अरे काट काट काट, अरे मेरा भूत क्या देख रहा है, काट।
2: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
3: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
4: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
5: उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
6: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
7: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
8: हमारे घर के सारा सामान बह जाएगा।
9: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
6: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
9: सारी फसल बह गई।
8: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा, सारा सामान
9: जल्दी
8: भी तो ऊपर ले जाना होगा।
9: चलो जल्दी ऊपर।
8: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
9: चलो चलो,
8: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
9: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हां साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।

0: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया। उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया। लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी। मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार। अब तो मानव करो विचार।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता, मैं ही जीवन हूं धरती का। मुझे नष्ट मत करो, मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: किंदौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी,
4: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है?
3: आ रही हूँ चाची।
2: हाँ चाची।
5: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है रे।
1: हाँ?
4: वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
5: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
4: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ,
5: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
5: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी पर तो हो ही जाएगा।
6: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: छप्पर फाड़ गए।
5: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दांतों भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
5: हाँ ठीक है ना,
2: चल चलते हैं।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है।
1: मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा।
2: अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
3: हाय राम,
1: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं जो पेड़ काटने आए।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: वहां में देखो, हाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। सुनो सुनो, मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा लगेगा।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने

0: पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: हाँ, ठीक है, ठीक है।
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: हाँ,
2: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा।
1: हाँ,
2: अरे कोई है? हाँ, अरे बाहर निकलो।
1: हाँ,
2: चाची।
4: हाँ, क्या बात है?
2: बुआ जल्दी बाहर
5: आओ,
2: शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
5: क्या जंगल?
2: जल्दी आओ,
0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ीं और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
2: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
1: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
2: अरे डरो मत, भागकर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो
6: सबको। बड़ी बहादुर बनती है,
2: हम जान दे देंगे मगर पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। अरे देखते क्या है, चलाओ कुल्हाड़ी। अरे शिब्बा, तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
7: अरे साथियों, देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये
0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
8: चिब्बू भाग ले यहां से,
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
9: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
10: ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को।
11: अरे क्या बात
10: भाई, गौरा बहुत कमाल कर, जीतती रहे मिट्टी, जीतती रहे।
2: तो हम सबका कर्तव्य है।
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
12: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
13: और विमलेश को,
12: कुसुमलता,
13: जगबंधु,
12: चेतना
13: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
12: नमस्कार, नमस्कार।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म कटी पतंग में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आजकल।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है युवाओं की आशाओं और विचारों को साकार करना वर्तमान और भविष्य के लिए। आलेख वीणा सबलो पाठक, वाचन स्वर राणा शाहिद। हर साल 11 जुलाई का दिन दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि, प्रजनन स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व जनसंख्या दिवस के आयोजन की शुरुआत साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पहल पर हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की प्रेरणा 11 जुलाई 1987 को मनाए गए 5 बिलियन डे से मिली थी, जब यह अनुमान लगाया गया कि विश्व की जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच गई है। इसके बाद ही इस बात की जरूरत महसूस की गई कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या के प्रभावों पर वैश्विक स्तर पर चर्चा और जन जागरूकता जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या केवल संख्या का विषय नहीं है, बल्कि यह संसाधनों, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता से भी सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए यह दिवस समाज, सरकार और प्रत्येक नागरिक को जनसंख्या से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए कहा जाता है कि जनसंख्या केवल लोगों की संख्या नहीं, बल्कि किसी राष्ट्र की क्षमता, चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा का दर्पण होती है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किसी थीम पर आधारित होता है। इस साल की थीम है युवाओं की आशाओं और विचारों को साकार करना वर्तमान और भविष्य के लिए। यह युवाओं को एकजुट करने और उनके जीवन विकल्पों और संबंधों को समझने एवं समर्थन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह थीम लाइक्स, चॉइसेस एंड फ्यूचर्स, व्हाट यंग पीपल वांट एंड व्हाट शेप्स देयर डिसीजंस अबाउट रिलेशनशिप्स एंड पेरेंटहुड रिपोर्ट पर आधारित है। यह 73 देशों में 1,00,000 से अधिक इंटरनेट से जुड़े 18 से 39 साल की आयु के वयस्कों के विचारों पर आधारित है। विश्व की जनसंख्या को 1 अरब तक पहुंचने में सैकड़ों हजारों साल लगे, लेकिन फिर महज 200 साल में यह आश्चर्यजनक तरीके से 7 गुना बढ़ गई। साल 2011 में वैश्विक जनसंख्या 7 अरब के आंकड़े तक पहुंच गई और नवंबर 2022 आते आते यह 8 अरब तक पहुंच गई। विश्व की जनसंख्या वर्ष 2030 तक लगभग 8.5 अरब और साल 2050 तक 9.7 अरब पहुंचने का अनुमान है। कई विकसित देशों में जन्म दर घट रही है और वहां वृद्ध जनसंख्या की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि यह लगभग 147 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% है। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादियों में भी शामिल है। यदि इस विशाल युवा शक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, तो यही जनसंख्या भारत के आर्थिक विकास की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बढ़ती जनसंख्या की चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही हैं। इनमें परिवार नियोजन सेवाएं, मिशन परिवार विकास, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, महिला शिक्षा को बढ़ावा तथा संस्थागत प्रसव जैसे कार्यक्रम प्रमुख है। इसके साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी जनसंख्या स्थिरीकरण का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य भी गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य, जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हैं। जनसंख्या वृद्धि योजनाबद्ध और संतुलित होगी तो संसाधनों का न्याय संगत उपयोग संभव होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संपदा सुरक्षित रह सकेगी। किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी जनसंख्या की संख्या में नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता में निहित होती है। स्वस्थ, शिक्षित, कुशल और सशक्त नागरिक ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं रत्नेश सोनी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की

0: समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है बड़वानी से, जहां खरीफ सीजन के लिए अब तक 1,86,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का कार्य पूरा हो चुका है, जो प्रस्तावित लक्ष्य का 76% है। पेश है बड़वानी से हमारे संवाददाता शिवपाल सिंह सिसोदिया की यह रिपोर्ट।
1: पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में खरीफ का सीजन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब तक 1,86,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी का कार्य पूर्ण हो चुका है, जो प्रस्तावित लक्ष्य का 76% से अधिक है। कृषि विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह में 100% लक्ष्य हासिल हो जाएगा। पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों की समीक्षा करें तो जिले में फसल के पैटर्न में बदलाव साफ नजर आ रहा है। जिले के किसान अब परंपरागत कपास और धान जैसी फसलों की तुलना में मक्का की खेती को सबसे अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। वर्ष 2024 में जिले में मक्के का रकबा जहां 87,611 हेक्टेयर था, वो इस वर्ष बढ़कर 1,01,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पहुंच गया है। कृषि विभाग के अनुसार पिछले 3-4 वर्षों में जिले में मक्के की फसल के रकबे में लगातार वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण लागत का कम आना, सिंचाई के लिए अपेक्षाकृत कम पानी लगना तथा बाजार में फसल का बेहतर दाम मिलना है। जिन कारणों से जिले के किसान अब मक्के की फसल का रकबा बढ़ाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया।
0: हमारी दूसरी खबर है छिंदवाड़ा जिले से। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को धार्मिक क्षेत्रों के भ्रमण करने का मौका मिल रहा है। बीते दिनों जिले के 196 तीर्थयात्रियों को गुवाहाटी में स्थित सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए एक विशेष ट्रेन से रवाना किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता राकेश प्रजापति।
2: मध्य प्रदेश सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के बुजुर्गों को एक बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। गत दिवस शाम जब सूरज ढल रहा था, तब छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से 196 तीर्थ यात्रियों का जत्था असम के गुवाहाटी में स्थित सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए एक विशेष ट्रेन से रवाना हुआ। बुजुर्गों के चेहरे पर आस्था की चमक और जीवन के इस पड़ाव पर तीर्थ का संतोष साफ देखा जा रहा सकता था। बुजुर्गों को सफर में कोई परेशानी न हो, इसके लिए ट्रेन में उनके साथ 4 शासकीय कर्मचारियों को बतौर गाइड भेजा गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति।
0: अगली खबर है अशोकनगर से, जहां साइबर ठगी से सावधानियों को लेकर पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे अशोकनगर संवाददाता डॉक्टर नीरज शुक्ला।
3: साइबर ठगी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अशोकनगर पुलिस द्वारा सेफ क्लिक 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर वाहन रैली निकालकर नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक भी किया गया। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को यह अवगत कराना है कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी स्वयं को बैंक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कुरियर कंपनी, कस्टमर केयर प्रतिनिधि अथवा सरकारी संस्था का कर्मचारी बताकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। कई मामलों में फर्जी लिंक भेजकर मोबाइल हैंक किए जा रहे हैं, जबकि डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन निवेश, पार्ट टाइम जॉब, KYC अपडेट, बिजली बिल, लॉटरी, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग एवं फर्जी APK फाइल के माध्यम से भी ठगी की जा रही है। साइबर अपराधियों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय जागरूकता एवं सतर्कता है। यदि प्रत्येक नागरिक ऑनलाइन लेन देन करते समय आवश्यक सावधानी अपनाए और किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक अथवा संदेश पर विश्वास न करे तो अधिकांश साइबर अपराधों को रोका जा सकता है। अशोकनगर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम रुख करते हैं भोपाल की तरफ, जहां बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले की सतगड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया। पेश है भोपाल से हमारे संवाददाता ताहिर खान की यह रिपोर्ट।
4: भोपाल के सतगड़ी क्षेत्र में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क आकर लेगा। पार्क का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि इस क्षेत्र को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर देश और प्रदेश के करीब 200 से अधिक उद्योगपति, निवेशक और उद्योग संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि
5: कोला और क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हमारे विधायक जी बात कर रहे थे, ये कोलार क्षेत्र तो अपना है ही, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को, इसी सतगड़ी को भी डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे जाना जाए, मैं घोषणा करता हूँ इस पूरे क्षेत्र के लिए।
4: उन्होंने कहा कि
6: मुझे इस बात की प्रसन्नता है, डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर

0: भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। इतना खूबसूरत भोपाल, भोपाल रोजगार देने वालों लोगों का नगर बन रहा है। भोपाल से नया एक सूर्य निकल रहा है। भोपाल अब लोगों को आकर्षित कर रहा है। भोपाल ने पूरा प्रदेश, पूरे प्रदेश के हरेक अंचल में धीरे धीरे करके हरेक जगह पर हमारे निवेशक, हमारे राज्य के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर लेके आ रहे हैं। अभी हमने मुरैना में सोलर पार्क का एक बड़ा निवेश किया। चंबल के अंदर भी रोजगार आधारित उद्योगों के लिए पहले गुना में 2000 करोड़ का सीमेंट प्लांट और 2500 करोड़ का मिसाइल भी बनेगी शिवपुरी में, और पाकिस्तान के आखिरी कोने तक निशाना लगा सकते हैं। ये है मध्य प्रदेश की ताकत। 1000 किलोमीटर देश के दुश्मनों से निपटने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। जब भारत आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश थोड़ी कम पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश तो सबसे पहले नंबर पे खड़ा है। ये विकास के मामले में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी रखने वाली नहीं।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान।
2: हमारी अगली खबर है बालाघाट से, जहां बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए डायरिया रोको अभियान के तहत गांव में हैंड पंपों का सुधार और पेयजल स्रोतों का क्लोरीनीकरण किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं बालाघाट से हमारे संवाददाता श्रीनिवास चौधरी।
3: मेरा नाम बीएल उइके, प्रभारी कार्यपालन यंत्री बालाघाट। शासन के निर्देश अनुसार और हमारे विभाग के द्वारा जो जल स्रोत हैं इनके क्लोरिनेशन कार्य के निर्देश प्राप्त हुए हैं, और इसमें सतत हमारे जो जल स्रोत है लगभग 1066 योजनाएं हैं और 22020 हैंडपंप है। इन सभी जल स्रोतों में अक्सर बारिश के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के कारण जल जनित बीमारियां होती हैं, इनके क्लोरिनेशन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो हमारे इन सभी का क्लोरिनेशन कार्य बालाघाट जिले में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी।
2: अब हम चलते हैं दमोह जिले की तरफ, जहां खरीफ की फसल बुआई का कार्य शुरू हो गया है। किसानों को खाद की असुविधा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने ई टोकन के माध्यम से खाद उपलब्ध करा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे दमोह से हमारे संवाददाता अनिल जैन।
5: रुक रुक कर हो रही बारिश जिसमें किसान खरीफ की फसलों की बोनी कर सके, इसके लिए जिले में खाद उपलब्ध कराया गया है। अभी जिले में लगभग 14,000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है, जिसे डबल्ला केंद्रों, सहकारी समितियों और मार्कफेड के गोदामों में रखा गया है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने आकाशवाणी को बताया।
6: खरीफ के बोनी के सीजन को दृष्टिगत रखते हुए हमारे किसान भाइयों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, उन्हें सही खाद मिले, सही बीज मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले, सही दाम पर मिले, ये सब सुनिश्चित करने के लिए लगातार जो के विक्रेता हैं खाद बीज की निरीक्षण कराया जा रहा है। अभी तक 38 दुकानों का निरीक्षण कराया गया है, जिसमें से 14 में अनियमितता पाए जाने के कारण 10 के विक्रय प्रतिष्ठान के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और 1 पर FIR दर्ज की जा चुकी है और 3 पर FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से लगातार इस पर नजर रख के मॉनिटरिंग की जा रही है, किसी को कोई असुविधा ना हो। साथ ही हमारे जिले में आज की स्थिति में 14,000 MT खाद उपलब्ध है। पर्याप्त यूरिया, DAP, NPK सभी तरह के खाद उपलब्ध है। जो भी हमारे किसान भाई खाद लेना चाहें वो अपना विकास पोर्टल से टोकन प्राप्त करके खाद प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों को यही अनुरोध है कि वो पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, वो अपना खाद प्राप्त कर लें। मत्स्य शासन द्वारा उनको 0 ऋण पर 1 वर्ष के लिए लोन दिया जाता है खाद लेने के लिए, वो उसका उपयोग करें। आगे की फसल के लिए भी यदि आपको आवश्यकता है तो अभी से आप ले सकते हैं। हमारे जिले में पर्याप्त मात्रा में DAP, यूरिया और अन्य सभी तरह की खाद उपलब्ध है।
5: किसानों को बलराम ऐप या पोर्टल के माध्यम से ई टोकन जनरेट कर खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है बैतूल से, जहां बैतूल का गाजरिया आम को GI टैग प्राप्त हो गया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
7: मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाते हुए एक साथ 12 उद्यान की फसलों के लिए GI टैग हासिल करने में सफलता हासिल की है। देश में ये पहली बार हुआ है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में GI टैग मिला है। इसमें बैतूल का गाजरिया आम भी शामिल है। आम किस्म गाजरिया जिले की लोकप्रिय किस्म है। फलों की सुगंध अनानास जैसी होती है एवं गूदा गाजर के समान होने के कारण इसे गाजरिया आम कहते हैं। आम को GI टैग प्राप्त हो गया है, जिससे जिले को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी एवं किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। यह मुख्यतः विकासखंड बैतूल, घोड़ा डोंगरी, शाहपुर एवं चिचोली में अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इन्हीं विकासखंडों में क्लस्टर बनाकर क्षेत्र विस्तार की कार्य योजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के आय को 2 गुना बढ़ाने के लिए उनसे उद्यानिकी फसलों की खेती से जुड़ने

0: का आह्वान किया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
1: हमारी अगली खबर है भिंड जिले से, जहां उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानकारी दे रहे भिंड से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा।
2: भिंड जिले में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण डाइट भिंड में आयोजित हुआ, जिसमें कलेक्टर भिंड एवं मुख्य कार्यपालाधिकारी जिला पंचायत एवं जिला परियोजना समन्वयक का मार्गदर्शन रहा। इस दौरान डाइट प्राचार आनंद शर्मा, प्रशिक्षण प्रभारी डाइट संदीप सिंह कुशवाहा, जितेन सिंह भदौरिया और जिला सह समन्वयक अशोक भैया, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी और खंड स्रोत समन्वयक, ब्लॉक सह समन्वयक व ब्लॉक अकादमिक समन्वयक उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में जिला सह समन्वयक अशोक सिंह पवैया एवं डाट प्रशिक्षण प्रभारी संदीप सिंह कुशवाहा द्वारा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन शिक्षा सत्र 2026-27 में असाक्षर व्यक्तियों के सर्वेक्षण, मॉनिटरिंग एवं असाक्षर संबंधी अन्य गतिविधियों के सफल संचालन के निर्देश उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों को दिए गए। प्रशिक्षण में जिला सह समन्वयक अशोक पवैया और ब्लॉक सह समन्वयक MT द्वारा भिंड जिले के सभी साक्षरता से संबंधित आंकड़े PPT के माध्यम से प्रस्तुत किए गए और राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त निर्देश के अनुरूप PPT को प्रोजेक्टर की मदद से सभी प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया गया। प्रत्येक विकास खंड में अक्षर साथियों और शिक्षक की मदद से प्रत्येक घर के असाक्षर व्यक्तियों का ऑनलाइन ऑफलाइन 100% सर्वे कार्य कराया जाना सुनिश्चित हुआ। सर्वे कार्य 15 जुलाई 2026 तक पूर्ण कर NILP ऐप पर असाक्षरों की एंट्री 100% कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के लिए भिंड से अनिल शर्मा।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए अनुमति, नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ
5: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाश

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को आरबीआई की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन के स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड दौरे पर हैं। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण का।

पहले आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर आज किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत आज रात 8 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा रात 8:15 पर और रात 10:00। रात 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात 10:30 होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिएगा मुन्ने खां का सारंगी वादन राग पूरिया धनाश्री। ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का, और अब सुनिए कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, सुरमई सवेरा। फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:30। 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम पेश करेंगे भूपिंदर और मिताली सिंह की गाई चंद गजलें, शब्द सागर। ये कार्यक्रम सुबह 9:30 होगा। इसमें कल सुनिए परिचर्चा लोक गाथाओं का उद्भव एवं विस्तार। प्रतिभागी होंगे सर्वश्री कैलाश चंद्र पंत, वसंत निर्गुणे और डॉक्टर महेश चंद्र शांडिल्य। 10:00 सुनिए जिले की चिट्ठी। फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर आप सुनेंगे 10:05 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में कल आप सुनेंगे अजित सिंह का वीणा वादन राग बैरागी भैरव। प्रसारण का समय सुबह 10:30। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। प्रसारण समय है दिन में 12:00 और 2:30 पर। 12:30 होगा कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें कल सुनिए धारावाहिक हंसना मना है की 12वीं कड़ी। महिला सभा का प्रसारण होगा दिन में 1:00। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की होगी। 1:30 पर होगा लोक संगीत का कार्यक्रम और सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:45 पर। ये दोनों कार्यक्रम हमारे इंदौर केंद्र का योगदान होंगे। दिन में 2:00 फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होगा शाम 5:02 पर। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। शाम 5:33, शाम 6:30, रात 8:15 और रात 10:00 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

उर्दू कार्यक्रम कहकशां होगा रात 9:30 बजे, इसमें कल सुनिए आबशारे गजल। राग रजनी, शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में कल रात 10:30 बजे आप सुनेंगे श्रुति अधिकारी का संतूर वादन राग मालकॉन्स। और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 बजे पर किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, इसमें कल सुनिए डॉक्टर प्रवीण कुमार बर्डे के साथ की गई भेंटवार्ता, फल बगीचों में समसामयिक कार्य। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What?
2: ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले, प्रदेश टेक्नोलॉजी और हाईटेक निवेश का हब बन रहा। दतिया उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी से आशुतोष तिवारी और कांग्रेस से घनश्याम सिंह ने भरा पर्चा। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 जुलाई से शुरू होगा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान। और मानसून की रफ्तार धीमी, 22 जिलों में आज हल्की बारिश के आसार, 16 जुलाई से नया सिस्टम होगा सक्रिय। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश टेक्नोलॉजी और हाईटेक निवेश का हब बन रहा है। देश विदेश की अग्रणी कंपनियों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और शिक्षण संस्थानों की भागीदारी ने यह संकेत भी दिया कि आने वाले वर्षों में प्रदेश की विकास यात्रा तकनीक और नवाचार के सहारे नई ऊंचाइयों को छू सकती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 178.70 करोड़ के निवेश से स्थापित 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया, जिनसे 1,229 नए रोजगार सृजित होंगे।
5: ग्रोथ 3 कॉन्क्लेव के आज तीसरे शुभारंभ के अवसर पर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इस कॉन्क्लेव में 51 प्रकार की अलग अलग गतिविधियां संपन्न होगी। इन गतिविधियों के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 35,000 रोजगार के अवसरों का एक मौका रहेगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश को GCC सेमीकंडक्टर एवं डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
4: इस दौरान लीड इंडिया फॉर गूगल प्ले और MPSDDC के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी हुआ। वहीं स्पेन के बार्सिलोना स्थित सबमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पैट्रिक स्मिट सहित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में इकाइयां स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किए गए। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। आशुतोष तिवारी का पर्चा भरवाने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव मौजूद रहे। कांग्रेस के तत्कालीन विधायक राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी शून्य घोषित कर दी गई थी, जिसके बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। 30 जुलाई को दतिया सीट पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 अगस्त को मतों की गणना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। नमो ऐप और माईगोव पोर्टल के जरिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक से सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। केंद्र सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र 1 महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरि है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6ठा नीलगिरि श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया कि INS महेंद्रगिरि को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था। पेश है एक रिपोर्ट।
6: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरि, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ

0: कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के साथ गाइडेड मिसाइल युद्ध पोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्ध पोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से बचाने और समाज में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। जनसंपर्क अधिकारी राजेश ताहिमा ने आज बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अभियान के अंतर्गत समयबद्ध रूप से जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में दुग्ध समृद्धि अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हुआ। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि 18 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में शहडोल जिले के 7,912 पशुपालकों से संपर्क कर उन्हें जागरूक किया जाएगा। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार, पशु पोषण और स्वास्थ्य की जानकारी दी जाएगी। उधर नर्मदापुरम जिले में 6 दिवसीय अभियान के दौरान नर्मदापुरम, बाबई, पिपरिया, बनखेड़ी, सुहागपुर, सिवनी, मालवा, केसला विकासखंड के 11,595 पशुपालक परिवारों तक विभागीय अमला पहुंचेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अशोकनगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प पूरा हो गया है। स्टेशन के नवनिर्मित स्वरूप का 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने भोपाल रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी सोमवार यानी आज अशोकनगर पहुंचे और उन्होंने स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पत्रकार संघ ने केंद्रीय मंत्री और गुना संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम संबोधित एक मांग पत्र DRM को सौंपा। ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग अशोकनगर को इंदौर और नई दिल्ली से सीधी रेल सेवा के जरिए जोड़ने की रही। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025 के राज्य और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। विभाग को पूर्व में समय सीमा के भीतर बेहद कम संख्या में आवेदन मिले थे, जिसके चलते जमीनी स्तर पर काम करने वाले वास्तविक हकदारों तक पहुंचने के उद्देश्य से आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कुल 6 अलग अलग श्रेणियों में राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें विजेताओं को 1,00,000 रुपए तक की सम्मान निधि और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। प्रदेश में मॉनसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। प्रदेश के करीब 60% हिस्से में मॉनसूनी बादल छट गए हैं, जिसके चलते अगले 5 दिनों तक कहीं भी भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। 16 जुलाई से एक नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है। सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में पिछले 4 दिनों से मॉनसून की गति धीमी पड़ गई है, जिससे बारिश का दौर थम गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर सहित तमाम जिलों में अलीराजपुर में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 जुलाई से सेना भर्ती रैली शुरू होगी। मंडला जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला योजना भवन में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक आयोजित की गई। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। राजगढ़ कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनहित से जुड़े मामलों, समय सीमा के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खंडवा में रक्तदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 16 जुलाई को महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड और 18 जुलाई को खान शामली वार्ड में विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी में 14 जुलाई से दस्तक अभियान की शुरुआत होगी और 31 अगस्त तक

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: आकाशवाणी का यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनवे वाले हमारे सभी भैयाहरन को भौजी बिन्नाहरों को आरती की राम राम। और भैयाहरों कैसे हाल चाल हैं आप सभी के? तो आज तो देखो अपनी चौपाल पे मुत की भीड़ दिख रही है। हाउ आज लोकमाधुरी कार्यक्रम सो है, सो सबे अपनी अपनी फरमाइश को इंतजार सो हुई है। तो भैया हरो लोकमाधुरी कार्यक्रम को तनक आपको इंतजार करना हुए और अपन तब बासे पहले बतकाव कर लें। तो सबसे पहले तो जो बताओ भैया कैसे हालचाल हैं, है ना? और हमें उम्मीद है कि सबके हालचाल अच्छे हुई हैं। देखो पानी तो बरस ही रहो है। और भैया पानी की बात करें तो आजकल के समय में सबसे ज़रूरी का है, सबसे ज़रूरी है भैया पानी। काहे से बिन पानी सब सून। रहीमदास जी की जो बात है, देखो उन्हें कितने पते की बात, सबसे वो हमें पहले ही बता गए हते कि, और देखी जाए तो कितनी दूर की उनकी सोच हती कि अगर पानी नहीं है तो जीवन जीवे की सोचियो भी मती। तो भैया हरो जब पानी इतेक मोल को है तो का कभू हम और ने जा सोची कि जब पानी को हमें कैसे का सहेजने हैं, है ना? और पानी को हमें कैसे सहेजने हैं, उनको बर्बाद नहीं करने हैं, पानी को बेकार नहीं बहाने हैं। तो भैया हरो जो पानी को भी अपन, हम तो यही कहें कि उत्तो ही अपन उपयोग में लाएं जितने की अपन का ज़रूरत हो। और पानी की मोल की तो भैया देखो ऐसे जानो, उनसे पूछो जो एक एक घड़ा पानी लावे के लाने कितेक मील पैदल चलते हैं, कितेक गहरे कुआं में अपनी जान की परवाह ना करत भाई वहाँ में उतर जाते हैं। अरे भैया राजस्थान में तो भैया जब बरसात को पानी ही उनके पूरे साल काम में आते और भी जब पानी को साल भर सहेज के रखते और वहीं से उनकी पूर्ति भी होते। तो आज हम और भी भैया देखो वर्षा जल सहेजवे यानी कि कैच द रेन अभियान के बारे में चर्चा करें। और भैया जा अभियान को सीधो सो जई मतलब है कि पानी जितें गिरे जवे गिरे उतई अपन को सहेजने हैं। तो भैया बरसात को मौसम में पानी बरसते ज़्यादातर का होता है कि पानी जो है वो नालियन में बह जाते बेकार बर्बाद हो जाते, तो ई को सहेजो भैया बहुत ज़रूरी है। अगर हम बरसात के पानी को ज़मीन के भीतर नहीं उतारें तो भैया देखो गर्मियों में हमारे कुआँ हैंडपम्प पानी जो उतर जाए ऊखो पानी उतर जाए और फिर हम और खेती के लाने परेशान हुई हैं। तो वर्षा जल को सहेजवे के लाने हम का करें? तो भैया सबसे ज़रूरी तो यही कि देखो अपन जो कहते हैं ना कि गांव को पानी गांव में और घर को पानी घर में या खेत को पानी खेत में, तो भैया अगर पानी वर्षा जल है और अपने घर पे जो छत है तो छत को जो पानी है अपन सीधे पाइप के जरिए से ज़मीन में एक सोखता गड्ढा बना के बाह में सहेज सकते। इससे का हुई है कि जो जल स्तर है वो अच्छो रहे और दूसरे अपन कुआँ ताल तलैया है बावड़ी है उनकी साफ़ सफाई कर लें, उमें अपन जब वर्षा जल को सहेज सकत है ना। और संगे संगे भैया खेतन की मेड़बंदी कर दें तो उसे का है कि पानी जो है खेत को पानी खेत में ही रहे और जब अपन को खेती किसानी को काम हुई है भैया तो अच्छी फसल के लाने जो फ़ायदा भी दे है। और संगे संगे भैया एक बात और कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन को पेड़ पौधे भी लगाने हैं, काय से पेड़न की जो जड़ें हैं वो पानी को ज़मीन के अंदर सोखवे में बड़ी मदद करते। तो भैया हरो जब बरसात के पानी को सहेजवे को काम अब देखी जाए तो केवल अपनों ही नहीं है या वो शासन को ही नहीं है बल्कि ई में हम सब की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम पानी बचाएं तो समझो भैया हमारा भविष्य भी बचे। और जब हम तो यही कहें कि अगर घरन घरन में जो जागरूकता आ गई तो भैया हरो अपने खेत की फसलें तो ले लहा हैं ही, संगे संगे जो अपना भविष्य है और अपनो जो पशुधन है ऊखों भी आराम से पानी की जो ज़रूरत है वो भी पूरी होती रहे। तो हम तो भैया यही कहें कि हम सबको

संकल्प लेने हैं कि हम बरसात के पानी की एक बूंद भी बेकार नहीं बहाएं, एक बूंद भी बेकार नहीं जान दें, उखो हम सहेजें। और संगे संगे भैया देखो, अपनी जो खेती है वो भी तो सीधे पानी से जुड़ी है ना। खेती में जब हम काम करते हैं, अच्छी फसल के चाना में नए नए तकनीकी को उपयोग करते हैं, नए नए प्रयोग करते रहते हैं, जही लाने की भैया अपन को अच्छी फसल मिले, अच्छा लाभ मिले हैं, और कोनो अपन को नुकसान ना उठान पड़े। तो भैया खेती में भी कहते हैं ना कि बदलाव जरूरी है, नहीं तो क्या होता है कि जो माटी होते हैं बाकी जान सी निकल जाते हैं, बाकी जितनी भी उर्वरा शक्ति होते वो ख़त्म हो जाते। तो भैया यही बदलाव जो है उखो वैज्ञानिक भाषा में फसल चक्र कहते हैं। और जी को मतलब भी जो ही है कि हम एक ही खेत में हर साल एक फसल ना लेके अदल बदल करके फसलें बोत रहे। काहे से देखो, एक जैसी फसल अगर अपन हर साल लेते रहें तो उसे कहा है कि माटी के जो पोषक तत्व होते हैं भैया वे ख़त्म हो जाते हैं। फिर आगे जाके काहे माटी की ताकत जब ख़त्म हो जाते हैं तो हमें जो कीड़ा मकोड़ा है खेतन में बाकी बीमारी लगन लगत है। तो इन सब मुसीबतों से बचवे को बस एक ही इलाज है, वो है भैया हरे फसल चक्र। अब जैसे देखो फसल चक्र की बात करें, अपन खेती कर रहे हैं तो खेती में अपन कैसे फसल चक्र को लाभ ले सकते हैं। तो भैया फसल चक्र से मतलब जो ही है कि जैसे मान लो अपन एक साल गहरी जड़ वाली फसल अगर बो रहे हैं, जैसे अरहर कपास ये गहरी जड़ वाली फसल होते हैं, तो जे अगर अपन ने खेती जाके कर ली तो अगली साल अपन उथली जड़ वाली जैसे गेहूँ है धान है ईखों बो सकते हैं। इसे कहा है माटी की हर परत को सही उपयोग होता है। ऐसे ही अनाज के बाद अपन दलहनी फसलें ले सकते हैं, जैसे मूंग उड़द चना मटर ऊखों बो दें है ना। तो उसे भैया क्या होता है कि दलहनी फसलों की जो जब अपन बोत है तो दलहनी फसलों की जड़ें में जो गठान होते वो हवा से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं, और अगर देखी जाए तो एक तरह से बिल्कुल मुफ्त की कुदरती जैविक खाद को जो काम करते हैं। और फिर जो भी कर सकते हैं कि एक साल ज़्यादा पानी चाहना वाली फसलें होए तो दूसरे साल अपन कम पानी की जी में चाहना होते है ना, ऐसी फसलें बो सकते हैं, तो उसे ज़मीन में जो पानी को स्तर है वो भी अच्छो बनो रहे। तो भैया फसल चक्र एक ऐसी तरकीब है जी में गांठ से कछु नहीं जाने, खर्चा कछु नहीं होने, बस अपन को अदला बदली करके फसलें बोने और माटी की जान बचाने और अपनी खेती को फ़ायदा पहुँचाने। तो भैया अब अपन बात कर लेते हैं कछु ऐसे भैया हरन की जिनने बारहवीं तो पास कर ली लेकिन अब पूरे दिन घर में बैठे बैठे मोबाइल चलाते रहते हैं, कैसे उनके पास कछु और काम ही नहीं है, है ना। तो अब क्या करें? तो भैया गांव के ऐसे मोड़ा मोड़ी जिनके पास कछु भी काम धंधा नहीं है, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, तो ऐसे लोगों के लाने शासन ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू करी है, जी में उन्हें अलग अलग तरीका के काम भी सीख सकते हैं। अब जैसे कंप्यूटर चलावे को काम है, मोबाइल सुधारवे को काम है, बिजली फिटिंग को काम है, नल की फिटिंग है, कारपेंट्री है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सब काम जो है वो वे सीख के वे होशियार बन सकते हैं। अब आप सोचत हुई हो कि जिज्जी ने तो जो खर्चा की बात बता दी है ना, जेब में नहीं है धेला, कहाँ से हम और काम सीखे, कहाँ से कैसे का करें। तो भैया हारो आपको बता दे कि ई में एक और पैसा नहीं लगता ही, सब कछु फ्री है। और तो और अगर ट्रेनिंग कोनो दूसरे शहर में हो रही है भैया तो उतने रहवे खावे की सब सुविधा आपको मिलत है, संगे संगे किताबें कपड़ा ड्रेस सब कछु सरकार देते हैं। तो भैया बात आते हैं कि ईखो लाभ कौन ले सकते, तो ईखो लाभ भैया बे ही लोग ले सकते हैं जो 15 साल से लेके 35 साल तक के भैया आ रहे हैं या भिन्ना आ रहे हैं अपनी, है ना। तो ई में क्या होता है ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी लगवाई जाते हैं और 3-4 महीना की ट्रेनिंग होने के बाद भैया हाथ में काम भी आ जाते हैं। तो अगर आप जी को लाभ ले वो चाहो तो अपने जनपद पंचायत ऑफिस में जाके अपनो जो ग्रामीण आजीविका मिशन है जो अधिकारी जितने बैठे थे उनके पास जाके अपने नाम लिखा दो, और भैया गांव में ही कंप्यूटर वाले की दुकान पे जाके ऑनलाइन अपन जो भी पतो कर सकते हैं कि अपन को कैसे का आगे करने हैं काम का, कहाँ सीख सकते हैं, कौन सी जगह अपन खा मिले। और जब आप ऑनलाइन काम फॉर्म भरे हो तो भैया उमे का होते हैं कि देखो कौन कौन सी चीज़ें चाहने होते हैं, तो भैया वहाँ में आधार कार्ड लगत है ना, और संगे संगे आपको जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है, अपने मार्कशीट होते वो लगत है, बैंक को खाता, ये सब चीज़ें कागज़ पत्र आपको तैयार करके रखने हैं। तो भैया अगर आप जी को लाभ उठावो चाहो तो आज ही अपने ब्लॉक ऑफिस में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और जय योजना को लाभ उठाओ। तो भैया अरे देखो अब मुद की बातें हो गई हैं, अब समय हो रहा है कार्यक्रम लोकमाधुरी को, तो चलो शुरू कर रहते हैं कार्यक्रम लोकमाधुरी। लेकिन बात से पहले सुन लेते हैं ये विज्ञापन।

तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं अखिलेश सोनकिया के जा गीत को, और जा गीत की जो फरमाइश है, जो लोक भजन की फरमाइश है, वो हमें लिख भेजी है ग्राम संदलपुर आंतरी से कालीचरण यादव, चांदनी यादव, आरती यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने। तो सुनाते हैं ये लोक भजन।

और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं अशोक कुशवा और साथियों के स्वर में ये भजन, जब फरमाइश जब गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है कट्टू पहाड़िया के पास छतरपुर बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, महाराज चक्रवर्ती, बड़े भैया हरिराम, बड़े भैया दशरथ, श्रीमती शीला भाभी, जसोदा भाभी, भगवती, रामकली, ममता देवी, उमा देवी, सावित्री, अंश, मोहिनी, गोलू, नीरज, भारती, काजल, करण, बाबू और समस्त रामटोरिया बुंदेलखंड निवासी। तो चलिए आपको सुनवाते हैं अशोक कुशवा और साथियों के स्वर में ये भजन।

और आइए अब अपन सुनते हैं कृतेंद्र सिंह सूर्यवंशी के स्वर में ये राष्ट्रभक्ति गीत। और जो गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है, ग्राम बिडौरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र सिंह गुर्जर, सूर्यांश गुर्जर, मानवी गुर्जर, नैना गुर्जर, नंदिनी गुर्जर और उनके सभी संगी साथियों ने। तो चलिए सुनते हैं कृतेंद्र सूर्यवंशी के स्वर में ये देशभक्तिपूर्ण गीत।

और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ममता गोस्वामी के स्वर में ये गीत, और गीत की भजन की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्रामवा पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया से मध्य मेहरबान सिंह नागल, संतोष कुमार नागल, प्रताप सिंह नागल, अभिषेक कुमार नागल, शिवम कुमार नागल और उनके मम्मी पापा, और साथ में सभी संगी साथी सुनना चाहते हैं ममता गोस्वामी के स्वर में ये भजन। तो चलिए हम और आप मिलके सुनते हैं ये भजन।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवावे जा रहे हैं दामोदर शर्मा के स्वर में ये लोक भजन। और जब भजन की फरमाइश हमें लिख भेजी है रागिनी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, अहमदाबाद तुलसी हॉस्पिटल मोदी हॉस्पिटल से काजल कारण, भारती आरती, श्रीमती सिनेमा देवी, प्रियंका चोपड़ा, प्रियांशु, राजू ऑपरेटर, आयुषी, अनुष्का और समस्त रामटोरिया बुंदेलखंड निवास। तो चलिए आप सबकी पसंद का सुनते हैं दामोदर शर्मा का ये भजन।

0: भारती की राम राम जय जवान जय किसान।
1: तेरी कही नहीं माने रे, जाके काटो।
2: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम चौपाल। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।
3: लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। इसमें आज आप सुनेंगे पश्चिम एशिया संकट के वर्तमान परिदृश्य और वैश्विक प्रभाव पर चर्चा।
4: इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
5: दयाल जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जो पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है, कुछ समय पहले ये आशा की जा रही थी कि इस स्थिति में सुधार होगा, लेकिन वर्तमान समय में ये कहा जा सकता है कि तनाव की जो स्थिति है वो कम नहीं हो पा रही, इस पर आप क्या कहेंगे?
6: देखिए, मेरे विचार में जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। यूएस और

0: ईरान के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किया गया था पिछले महीने, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कह दिया कि सीज फायर अब खत्म है। आपको याद होगा कि उस एमओयू में ये कहा गया था कि ईरान जो है वो कमर्शियल वेसल्स को 60 दिन के लिए फ्री पैसेज देगा और वो ओमान के साथ काम करेगा कि किस तरह से आगे ये सर्विसेज दी जाएं, इस पे निश्चय किया जा सके। लेकिन ईरान ने जो कंडीशन थी उसको पूरी तरह से नहीं कबूल किया और जो पुराना स्टेटस को था जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ओपन इंटरनेशनल वाटरवे था, उस स्थिति पे ईरान वापस जाने को तैयार नहीं हो रहा था और बार बार ईरान ने यह कोशिश की कि वो दिखाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका सॉवरेन कंट्रोल है। और यहां तक कि ईरान ने तो कुछ टोल्स भी डिमांड किए, उन्होंने कहा कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फीस है। तो जब ये कमर्शियल वेसल्स ने टोल्स देने को इनकार कर दिया और ईरान की बातें मानने से इनकार किया, तो ईरान ने इन कमर्शियल शिप्स को अटैक किया और उसके जवाब में अमेरिका ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए। ईरान ने फिर अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किए, खासतौर पे बहरीन और कुवैत में। तो इस सब से सिचुएशन जो है वो बहुत गंभीर होती जा रही है।
1: क्या ये द्विपक्षीय टकराव है या यूं हम कहें कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम बन चुका है सीज फायर के फेल होने के बाद?
0: ये वाकई में ये जो है संतुलन तो बिल्कुल खत्म हो गया और जो स्थिति है वो और गंभीर होती जा रही है। अब मेरे विचार में ये बहुत बड़ा संकट है क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं और इसको कैसे खत्म किया जाए ये सबसे बड़ा एक प्रश्न उठकर सामने आया है।
1: दयाल जी, अगर ये टकराव थोड़ा और गहरा होता है तो इसका असर कोई संदेह नहीं कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, समुद्री व्यापार भी प्रभावित होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। तो भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं सामने?
0: देखिए, एक तो ये कि भारत के लगभग 9.5 मिलियन यानी 95 लाख लोग रहते हैं गल्फ में और वहां काम करते हैं, वहां से रिटेंसेस भेजते हैं, तो उनकी फैमिलीज की लाइफ अफेक्ट होती है। अगर ये जो लड़ाई बढ़ती है और उनकी नौकरियां जाती हैं तो ये बहुत बड़ा संकट कई फैमिलीज के लिए होगा और भारत के रेमिटेंसेस जो है उनके कम हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, हमारा जो ऑयल सप्लाई है वो इस रास्ते से आता है। लगभग 85-20% हम अपने क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं और वेस्ट एशिया से करीब 50% हमारे पास आता है क्रूड ऑयल। तो अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो हमारे जो सप्लाईज हैं ये बंद होते हैं और क्या होगा कि जो कीमत बढ़ेगी, ऑयल सप्लाईज वहां से बंद होंगी तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी, तो इस वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है और इसीलिए हम चाहते हैं कि लड़ाई और आगे ना बढ़े, किसी तरह से समझौता हो।
1: दयाल जी, जहां तक भारत की बात हम करते हैं तो पश्चिम एशिया के अधिकतर देशों के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं, तो ऐसे में हमारे लिए संतुलित और बहुआयामी कूटनीति बनाए रखना आपको लगता है कि कुछ चुनौतीपूर्ण हो गया है या ये सामान्य है?
0: नहीं, वाकई इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया है। जरूर हमारे रिश्ते सब पक्षों से अच्छे हैं, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और देखिए इसराइल के साथ भी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और यही सबसे मेन पार्टीज हैं इस लड़ाई में। ये बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हम जरूर चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो, हम कोशिश करते हैं कि दोनों को समझाएं, बैक चैनल डिप्लोमेसी कुछ कायम है, लेकिन जो ये स्थिति है ये रोज बरोज और गंभीर होती जा रही है।
1: दयाल जी, वैसे तो भारत लंबे समय से संवाद का, कूटनीति का और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक रहा है और हमारी स्ट्रेटजी भी ऐसी ही रहती कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए, तो मौजूदा परिस्थितियां जो हैं, तो ऐसे भारत क्या मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है या भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में सामने आ सकता है?
0: देखिए, हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि लड़ाई का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहा था, इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो यही बात हम समझाते हैं दूसरे देशों को कि भाई लड़ाई झगड़े में मत पड़ो और कोई मुश्किलात है उनको डायलॉग से सॉल्व करो, डिप्लोमेसी से सॉल्व करो। इंडिया जरूर एक ऐसा देश है जो कि कोशिश कर सकता है, न सिर्फ अकेले बल्कि ऐसे फोरम्स के थ्रू जैसे G20 है जहां भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या ब्रिक्स है, इनके जरिए ये कोशिशें की जा

0: सही है कि दोनों साइड्स अमेरिका इसराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, इनको समझाया जाए कि आप डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएं और लड़ाई का रास्ता छोड़ें, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस निकल सकते हैं जिसकी वजह से ये लड़ाई खत्म हो और जो सिक्योरिटी ठीक से बन जाए, जिससे ये जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट कायम रहे।
1: दयाल जी, जैसा कि अभी आपने संयुक्त राष्ट्र और G20 का जिक्र किया, तो हम थोड़ा सा इसमें और चीजें ऐड कर लें, ब्रिक्स की हम बात कर लें और क्वाड की बात कर लें, अन्य भी कई बहुपक्षीय मंच हैं जो अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो क्या लगता है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वैश्विक संस्थाओं में भी सुधार की जरूरत है?
0: देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सुधार की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। अब यूनाइटेड नेशंस की आपने बात की, यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पीस फिर से कायम कराए और ये लड़ाई खत्म कराए, लेकिन क्या बात है कि ये यूनाइटेड नेशंस हमेशा ऐसा करने में सक्षम नहीं रहता है, वो कामयाबी नहीं पा पाता है। उसकी वजह है यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो जो उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके इशारे पे इस तरह से चलती है कि कोई भी परमानेंट मेंबर जो है वो डिसीजन को वीटो कर सकता है। उनकी जो वीटो पावर है वो ग्लोबल पीस के रास्ते में एक अड़चन बनी हो जाए, क्योंकि देखिए अगर कोई जैसे लड़ाई चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई ऐसा निर्णय लेता है जो अमेरिका को इंटरेस्ट को नहीं सूट करता, अमेरिका उसको वीटो कर ले। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए, जो रशिया को नामंजूर हो रशिया उसको वीटो कर देगा। तो ये वीटो पावर ऐसे है। और इसके साथ साथ देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में की गई थी, तब दुनिया दूसरी थी, भारत एक आजाद मुल्क था ही नहीं, तब से जो है इतने परिवर्तन हुए हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वैसी की वैसी बनी हुई है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है, और कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे भारत है, जर्मनी है, जापान है, ब्राजील, इन सबको परमानेंट मेंबर्स की तरह उसमें शामिल करना चाहिए और वीटो पावर उनको भी देनी चाहिए, इन सब देशों को। या तो आप वीटो पावर पूरी तरह से हटा दें, और अगर वीटो पावर कुछ देशों के पास है तो भारत के पास क्यों नहीं है? भारत जो है वो दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन के टर्म्स में कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भारत को क्यों नहीं उसमें परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह उसमें शामिल किया गया, क्यों नहीं वीटो पावर दी गई? हमारे पास इस तरह की शक्ति हो तो जरूर हम दुनिया के जो इस तरह के झगड़े हैं उनको सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं।
1: दयाल जी, जो बदलते हुए वैश्विक समीकरण है, तो ऐसे में भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति है, इसको आप कितना सफल मानते हैं, और क्या आपको लगता है कि भारत को इसमें भी बदलाव की अब आवश्यकता महसूस हो रही होना इसमें चाहिए?
0: देखिए, भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी हमेशा अपनाता है, और इस वक्त दुनिया में जो सूरत हाल है उसमें किसी एक के साथ तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए हम मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हैं, हम सब देशों के साथ अपनी इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाते हैं, और ऐसा ही करना जरूरी है। हमें कभी भी किसी गुट में नहीं शामिल होना चाहिए, हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी साइड में शामिल हो गए तो उसके सब संकट आपके संकट हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखते हैं तो आपके लिए यह हमेशा अच्छा होता है। भारत की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट पे बेस्ड है, और मेरे विचार में ऐसे ही रहनी चाहिए।
1: दयाल जी, जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, इस साल की शुरुआत से अगर देखें, खासतौर से फरवरी से देखें, तो काफी बदल गया है और लगातार भारत के हितों पर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं, लेकिन भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत की जब हम बात करते हैं तो अपनी स्थिति को लगातार मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है, तो इन दोनों परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखें तो भारत की जो सोच है इसे लेकर के, उसे आप किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए, भारत जो है वो बिलीव करता है इन सागर डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, और जो हमारी पॉलिसी है इंडो पैसिफिक रीजन पे वो इसी पे आधारित है। हम हमेशा कहते हैं कि सब देशों के जो हित हैं वो बने रहें और किसी को नुकसान ना हो, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है कि इस रीजन में ये चाइना एक ऐसी कंट्री है तो सबका नाक में दम करके रखे हुए, क्योंकि चाइना जो है वह एक्सपेंशनिस्ट है, चाइना चाहता है उसी का दबदबा रहे, चाइना चाहता है जो सप्लाई चेन्स है वो उसके कब्जे में हो, और इससे दूसरे देशों को नुकसान होता है। तो हम दूसरे देशों के साथ इस तरह से काम कर रहे हैं कि चाइना का ये जो एक्सपेंशनिस्ट रूल है ये रुके और सप्लाई चेन कायम रहे। अभी देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशल्स का दौरा किया और सेशल्स के साथ एक ऐसे रिश्ते बनाने की कोशिश की कि हम जो वेस्टर्न इंडियन ट्रेन है उसमें अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मजबूत कर सके। और अभी उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी दौरे पे गए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। और इन सबके साथ जो रिश्ते बनाने की कोशिश की जा रही है वो इस दिशा में कि सप्लाई चेन अच्छी बनी रहे, हमारी जरूरतें वो पूरी कर सके, उनकी जरूरतें हम पूरी कर सके। देखिए ये बायलैटरल रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं कि दोनों साइड्स को फायदा हो। अब जैसे न्यूजीलैंड है तो साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और न्यूजीलैंड की पर कैपिटा इनकम अच्छी, वो वहां के लोग रईस हैं और वो अच्छी चीजें खरीद सकते हैं। तो भारत को एक मार्केट मिल रहा है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स को 100% टैरिफ एग्जेम्पशन मिल रहा है वहां। तो इस तरह से हमने ये कोशिश की है कि इस पूरे क्षेत्र में हमारे जो दूसरे देशों के साथ रिश्ते हों वो ऐसे हों कि उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। और चीन को यह संदेश गया है कि देखिए आप जो अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको ऐसा नहीं करने।
1: दयाल जी, पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति को हम देखें और यदि अमेरिका ईरान जो तनाव है अगर थोड़ा बहुत लंबा खींचता है तो भारत के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, खासतौर पर हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, हमारे समुद्री व्यापार के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जो हमारी अपनी जरूरतें पूरी होती हैं वो, और भी तमाम चीजें हैं जो हमारे मानवीय हितों को ध्यान में रख करके हम जिन पर बात करते हैं, खासतौर पर प्रवासी समुदाय और भारतीय नागरिक जो बाहर हैं।
0: देखिए जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं पूरे रीजन में जो रहते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। हम उनके हितों में हमेशा कार्य करने की कोशिश करेंगे, ऐसी पॉलिसीज बनाने की कोशिश करेंगे कि उनके हितों पर हम ध्यान रख सकें। और पूरे संकट के दौर में हमने इस बात को सब देशों के साथ ये दोहराया है कि हम अपने एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी के नुकसान को नहीं सह सकते, उनके जो हित हैं वो आप प्लीज कायम रखें। ईरान के साथ भी ये बातचीत हुई, उनको भी ये समझाया है, यूनाइटेड स्टेट्स को समझाया है और गल्फ कंट्रीज को। तो देखिए गल्फ कंट्रीज को तो जरूरत है हमारे लोगों की, लेकिन अगर वहां पर युद्ध बढ़ता है, ये फैलता है, तो जरूर ये जो हमारी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटीज का नुकसान होगा। इसके अलावा देखिए ये जो हमारी क्रूड ऑयल की सप्लाईज है उधर से आती है, हमें रॉक फॉस्फेट वहां से मिलता है जो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जब हमारे इतने अच्छे रिश्ते रहते हैं तो वहां से इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और करता जाएगा, लेकिन अगर वो इस युद्ध में फंस जाएगा तो फिर तो ऐसा नहीं कर सकता, उस पे कुछ रुकावटें आ जाएंगी। तो सब वजहों की वजह से हम ये कहते आए हैं कि भाई पीस यहाँ पर स्थापित होना बहुत जरूरी है और हमारा हित इसी में है कि लड़ाई खत्म हो और हमारे जो इंटरेस्ट है चाहे वो ऑयल सप्लाईज के हो, चाहे हमारे वो एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन के हो, या चाहे जो हमारा बायलैटरल ट्रेड इन सब कंट्रीज के साथ उसके संबंध में हो, वो तभी प्रोटेक्टेड रहेंगे जब लड़ाई बन।
1: प्रभु दयाल जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम एशिया संकट के वर्तमान परिदृश्य और वैश्विक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभु दयाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आरजू फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की है। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: y de cenar.
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं हीर रांझा फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है कैफ़ी आज़मी ने और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। पुलिस आयुक्त नगरी पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने और संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेश का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वो केवल प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें तथा किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। और अब आइए सुनते हैं संजोग फिल्म में लता मंगेशकर को। बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और धुन मदन मोहन की।

पाए बहार आई। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने इस फिल्म से लिया है। इसके लिए आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सम्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा

0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर-19 और अंडर-23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों की व्यवसाय

0: समुदायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: Other operating income is not included.
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध IED विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में

0: तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का
2: गुड इवनिंग आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and 4 others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lords. And 16 Indian boxers enter finals at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with US Trade Representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Gil today began his official engagements in Spain by meeting First Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Gil said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. He added that both sides also exchanged views on the India-EU FTA and explored ways to deepen business ties and expand India's commercial engagement with Spain as a valued partner. Mr. Goel is currently on a five-day visit to Spain, Belgium and Finland from today. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. The electronic goods exports increased by around 19% from $4.14 billion in June last year to $4.93 billion in June this year. India's retail inflation accelerated to 4.38% year-on-year in June, breaching the Reserve Bank of India's midpoint target. The June inflation reading was moderately higher than the 3.93% recorded in May. Retail inflation continued to rise for the sixth consecutive month under the new Consumer Price Index or CPI series. According to data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, inflation in rural areas edged up to 4.74%, while in urban regions it rose to 3.92%. Food inflation rate based on the All India Consumer Food Price Index stood at 5.32% last month, up from 4.78% in the preceding month. A Delhi court today convicted former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and four others for the killing of Intelligence Bureau officer Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh was hearing the case against a total of 11 accused, including Hussain, and convicted five of them. The court found Tahir Hussain guilty under the charges of promoting enmity, rioting, assault, criminal force and murder. The case pertains to an FIR registered at Dayalpur Police Station on the complaint of Ravinder Kumar, father of Ankit Sharma. In his complaint, Ravinder Kumar alleged that his son was murdered by the then AAP councillor Hussain and others. Hussain was suspended by the Aam Aadmi Party after his name came up in the case. On 24th March 2023, a Delhi court framed charges against Hussain and 10 others. Defence Minister Rajnath Singh and Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, today inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway. Before the inauguration of the Lucknow-Kanpur Expressway, all these leaders inspected the expressway in Unnao. Later, they came back by the same expressway and participated in the function at Sainik School in Lucknow, where projects worth 4,850 crore rupees were launched today, which includes inauguration of the expressway and four-lane construction of a part of Lucknow-Hardoi Highway, along with laying of the foundation stone of a flyover in Lucknow. A report.
3: The 63-kilometer, six-lane Lucknow-Kanpur Expressway is expected to reduce travel time between Lucknow and Kanpur to just 35 to 45 minutes. A car journey between the two cities will cost rupees 275, and two-wheelers and three-wheelers are not allowed on it. It's also country's first expressway built with automated and intelligent machine-guided construction technology, which is used in countries like America and Germany. Equipped with AI-based speed enforcement, emergency call boxes at every 2 kilometers, and two integrated 24/7 control rooms, the expressway is designed for speeds of up to 120 km per hour, and it has no toll barrier. Earlier, Union Minister Nitin Gadkari began his engagement with a high-level review meeting at the Chief Minister's official residence on Kalidas Marg Road. The meeting was attended by senior officials from the Ministry of Road Transport and Highways, the National Highway Authority of India NHAI and the UP government. They reviewed the progress of ongoing and proposed national highway projects. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
2: The Joint Parliamentary Committee, JPC, examining the proposed One Nation, One Election framework today held discussion with various stakeholders and

0: ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक मुतवाजिन और तिजारती लिहाज से मौसर तिजारती माहिदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तिजारती मुजाकिरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवां माली बरस की पहली सहमाही में भारत की मजमूई बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले 11.37% ज्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन और दीगर चार अफराद को साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। अमरीका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। आबनाए हुरमुज पर कंट्रोल के तनाजे के बायस खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। खवातीन क्रिकेट में भारत ने तारीख रकम करते हुए लॉर्ड्स के मैदान में खेले गए पहले खवातीन टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। और जकार्ता में जारी 19 साल और 23 साल तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कम से कम चांदी का तमगा यकीनी बना लिया है। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती मुजाकिरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को बेबुनियाद, गुमराहकुन और मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका की टीमें एक ऐसे तिजारती माहदे पर पूरी संजीदगी से काम कर रही हैं जो मुतवाजिन हो और तिजारती एतबार से बामानी हो। नीज दोनों ममालिक के कारोबारी तबकों, किसानों, मजदूरों और सार्फिन के हकीकी फवायद फराहम करे। उन्होंने बताया कि पिछले महीने नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर के साथ उनकी मीटिंग मुस्बत रही थी। दोनों फरीकों ने ऐसे मुतवाजिन और मुफीद माहदे के लिए अपने अज़्म का इरादा किया और इस मकसद को हासिल करने के लिए दोनों ममालिक की टीमें मुसलसल राबते में हैं। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज स्पेन के अपने सरकारी दौरे का आगाज किया। उन्होंने स्पेन हुकूमत के अव्वल नायब सदर और कॉमर्स, तिजारत और कारोबार के वजीर कार्लोस कैपेबेलेरो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और स्पेन के इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफीद बातचीत की है। उन्होंने बताया कि मुजाकिरात में काबिले तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और इख्तियारात के मौजूदात पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक ने भारत और यूरोपीय यूनियन के आजादाना तिजारती माहदे पर भी ख्यालात का तबादला किया और कारोबारी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और स्पेन के साथ भारत के तिजारती ताउन को मजीद वसत देने के तरीक़ेकार पर गौर वखौज़ किया। जनाब गोयल आज से स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सरकारी सेक्टर के बैंकों पर जोर दिया है कि वो बैरून मुल्क भारतीयों NRI तक अपनी रसाई को मजीद बढ़ाएं और उनके लिए जिद्दत तराजी पर मबनी नई जमा पूंजी स्कीमें मुतारिफ कराएं। उन्होंने आज नई दिल्ली में बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान और सरकारी मालियाती इदारों के सरबराहान से गैर मुल्की करंसी NRI बैंक डिपॉजिट्स और गैर मुल्की करंसी कर्जों के तबादले के इकदाम के सिलसिले में बातचीत के दौरान ये बात कही। वजीर खजाना ने इस बात पर भी जोर दिया कि NRI बिरादरी से राबते को मजीद बढ़ाया जाए ताकि गैर मुल्की सरमाया और रुकूम की आमद का सिलसिला जारी रहे। मीटिंग के दौरान बैंकों और सरकारी मालियाती इदारों के सरबराहान ने वजीर खजाना को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तबादले की सहूलत की स्कीमों के तहत होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया। उन्होंने मजीद कहा कि बैंकों और सरकारी मालियाती इदारों की सरगर्म शिरकत से यह साबित होता है कि तबादले की सहूलतें मुल्क में गैर मुल्की करंसी की आमद को बढ़ाने में मौसर रोल अदा कर रही हैं। इस साल अप्रैल से जून की मुदत के दौरान भारत की मजमूई बरामदात का तखमीना 232 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा लगाया गया है, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुदत के मुकाबले 11.37% ज्यादा है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक जून 2026 के दौरान मजमूई बरामदात का तखमीना 73.45 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता साल के जून के मुकाबले 9.48% की मुस्बत नमू को जाहिर करता है। जून में जिन अहम शोबों की बरामदात में इजाफा हुआ है उनमें कीमती पत्थर और जेवरात, इंजीनियरिंग साजो सामान, नामियाती व गैर नामियाती केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और चावल शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान की बरामदात गुज़िश्ता साल जून के 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस साल जून में 4.93 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। اسی طرح اس میں تقریباً 19 فیصد کا اضافہ درج کیا گیا وزارت نے مزید بتایا کہ جون میں اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات کا تخمینہ 88.76 ارب امریکی ڈالر رہا جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 26 فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہے اس دوران جون 2026 میں بھارت کی خوردہ افراط زر سالانہ بنیاد پر بڑھ کر 4.38 فیصد ہو گئی ہے جو ریزرو بینک آف انڈیا کے ہدف کی درمیانی حد سے زیادہ ہے مئی میں افراط زر کی یہ شرح 3.93 فیصد تھی اسی طرح جون میں مہنگائی میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا صارفین قیمت اشاریہ سی پی آئی کے تحت یہ مسلسل چھٹا مہینہ ہے جب خوردہ افراط زر میں اضافہ دیکھا گیا ہے اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت کے مطابق دیہی علاقوں میں افراط زر 4.74 فیصد رہی جبکہ شہری علاقوں میں یہ 3.92 فیصد رہی کل ہند صارفین خوراک کی قیمتوں کے اشارے کے مطابق خوراک کی افراط زر کی شرح 5.32 فیصد رہی جو پچھلے مہینے کے 4.78 فیصد سے زیادہ ہے دلی کی ایک عدالت نے آج عام آدمی پارٹی کے سابق کاؤنسلر طاہر حسین اور دیگر چار افراد کو سال 2020 کے شمال مشرقی دلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے افسر انکت شرما کے قتل کے معاملے میں مجرم قرار دیا ہے ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ اس معاملے کی سماعت کر رہے تھے جس میں کل 11 لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا عدالت نے ان میں سے 5 افراد کو مجرم قرار دیا ہے عدالت نے طاہر حسین کو فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے فساد حملہ طاقت کے مجرمانہ استعمال اور قتل کے الزامات میں قصوروار گردانا یہ مقدمہ دیال پور پولیس اسٹیشن میں انکت شرما کے والد رویندر کمار کی شکایت پر درج ایف آئی آر سے متعلق ہے شکایت میں الزام لگایا گیا تھا کہ ان کے بیٹے کو اس وقت عام آدمی پارٹی کے کاؤنسلر طاہر حسین اور دیگر افراد نے قتل کیا اس معاملے میں نام سامنے آنے کے بعد عام آدمی پارٹی نے طاہر حسین کو معطل کر دیا تھا 24 مارچ 2023 کو دلی کی ایک عدالت نے طاہر حسین اور دیگر 10 ملزمین کے خلاف باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد کی تھی امریکہ اور ایران دونوں نے اپنے ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے مغربی ایشیا میں اختتام ہفتہ کے دوران حملوں میں اضافے کے بعد علاقائی سلامتی اور سفارتی کوششوں کے احیاء کے لیے کی جا رہی کوششوں کو نئی تشویش لاحق ہو گئی ہے حالیہ کشیدگی ایران کے ذریعے عمان کے ساحل کے قریب آبنائے ہرمز میں کنٹینر بردار جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے آبنائے ہرمز سے جو کہ عالمی تیل اور گیس کی ترسیل کی ایک اہم آبی گزرگاہ ہے کوئی بھی تجارتی جہاز نہیں گزرا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے رات بھر ایران کے کئی فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں جس میں فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈار مرکز میزائل اور ڈرون تنصیبات اور چھوٹے بحری جہاز شامل ہیں واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں پہلی بار یک طرفہ حملہ آور سمندری ڈرون بھی استعمال کیے گئے اور یہ کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی جہاز رانی پر کیے گئے حملوں کے جواب میں کی گئی ہے دوسری جانب اس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ اس نے اردن بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں کو اور عمان میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں بھارت اور جاپان نے آج آزاد کھلے اور اصولوں پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے جاپان کے شہر ٹوکیو میں منعقدہ 8ویں دفاعی پالیسی مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے عالمی اور علاقائی سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال پر جامع بات چیت کی اور باہمی مفاد کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا بھارتی وفد کی قیادت دفاعی سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے کی جبکہ جاپانی وفد کی قیادت بین الاقوامی امور کے نائب وزیر دفاع کانو کوجی نے کی مذاکرات کے دوران دونوں فریقوں نے گزشتہ دفاعی پالیسی مذاکرات کے بعد سے دو طرفہ دفاعی تعاون میں ہوئی اہم پیش رفت کا جائزہ لیا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری اور اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کیا افتتاح سے قبل تینوں رہنماؤں نے ضلع اناؤ میں ایکسپریس وے کا معائنہ بھی کیا اس کے بعد تینوں رہنما ایکسپریس وے کے ذریعے واپس لکھنؤ پہنچے اور سینک اسکول میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی جہاں تقریباً 4,850 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا گیا اور سنگ بنیاد رکھا گیا جن میں لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے لکھنؤ ہردوئی شاہراہ کے ایک حصے کو 4 لین کا بنانے کا پروجیکٹ اور لکھنؤ میں ایک فلائی اوور کی تعمیر شامل ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نتن گڈکری نے کہا کہ اگلے 2 برس میں ان کی وزارت اتر پردیش میں تقریباً 5,00,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو مکمل کرے گی
1: अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, प्रगतिशील होगा तो हिंदुस्तान की भी तरक्की होने वाली है। और इसलिए मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले दो साल में मैं उत्तर प्रदेश में 5,00,000 करोड़ रुपए के कार्य हम पूरे करेंगे। लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ।
0: जनाब गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को एक तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इससे उत्तर प्रदेश में सड़क रास्ते के निजाम को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 63 किलोमीटर तवील 6 लेन पर मुश्तमिल इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के दरमियान सफर का वक्त कम होकर सिर्फ 35 से 45 मिनट रह जाएगा। इस शाहराह पर कार का टोल टैक्स 275 रुपये होगा, जबकि दोपहिया गाड़ियों को दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। ये मुल्क का पहला एक्सप्रेसवे है जो खुदकार और तेज मशीनों से रहनुमाई हासिल करने वाली तामीराती टेक्नोलॉजी के जरिए तामीर किया जा रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका और जर्मनी जैसे ममालिक में इस्तेमाल होती है। इस एक्सप्रेसवे पर मस्नूई जहानत, एआई पर मबनी रफ्तार की निगरानी का निज़ाम, हर 2 किलोमीटर पर हंगामी कॉल बॉक्स और 24 घंटे काम करने वाले 2 मजबूत कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। ये शाहराह 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन की गई है और इस पर रवायती टोल बैरियर मौजूद नहीं है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के चंदे में मुबैना बेजाबतगियों में नामजद तमाम 8 मुलजिमीन की अदालती तहवील में मजीद 14 दिन की तौसीक कर दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज प्रतिभा नारायणन ने हुक्म दिया कि मुलजिमों को दोबारा 27 जुलाई को अदालत के सामने पेश किया जाए। खसूसी तहकीकती टीम SIT ने भी अपनी छानबीन शेयर करते हुए धर्म सेना के सदर संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की। मुजवजा एक मुल्क एक इंतखाब फ्रेमवर्क के इम्कान पर गौर कर रही मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी JPC ने आज लखनऊ में मुख्तलिफ शोबों के शराकत दारों और माहरीन से तबादला ख्याल किया। ये कमेटी मुल्कगीर मुशावरत के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर है। भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, आसाम, सिक्किम और मेघालय में भी कल शदीद बारिश हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का गुजर श्री गंगानगर, हिसार, मुरादाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बालूर घाट और फिर मणिपुर के मशरक जुनूब मशरक की जानिब जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कारेकल में कल मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश में गर्म मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। दिल्ली में महकमे मौसमियात ने कल मतला जुजवी अब्र आलूद रहने और तेज हवाओं के चलने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कौमी राजधानी में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। नई दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: खवातीन क्रिकेट में आज लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की। भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से शिकस्त दी। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से स्नेह राणा ने 4 विकेट जबकि सयाली सतघरे, क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। भारत ने कल चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का निशाना दिया था। जकार्ता में 19 साल और 23 साल तक की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 23 साल तक की उम्र के जुमरे में भारत के 8 मर्द और खवातीन मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। इस तरह 7 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और कांसे का तमगा हासिल किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका एक मुतवाजिन और तजारती लिहाज से मौसर तजारती माहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तजारती मुजाकरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवा माली बरस की पहली सहमाही में भारत की मौजूदी बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 11.37% ज्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन और दीगर 4 अफराद को साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
4: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। अच्छा नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। एक पुरानी कहावत है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये पंक्ति पानी के पर्यायवाची अर्थों के साथ साथ जल के अप्रतिम महत्व को भी दर्शाती है। हमारे देश में विशाल भूमिगत जल भंडार मौजूद है, लेकिन हाल के दशकों में इन संसाधनों को अत्यधिक दोहन, घटती गुणवत्ता, सीमित विनियमन के कारण बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे भविष्य में जल की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ते शहरीकरण, वर्षा के बदलते पैटर्न और घटते भूजल स्तर के साथ सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हम भविष्य के लिए जल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आज बचाया गया पानी का हर बूंद भविष्य के लिए सुरक्षा कवच है। हमारे देश की जल सुरक्षा केवल बड़े बांधों या नदियों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक अपने घर में वर्षा जल का प्रबंधन कैसे करता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाकर जहां पानी के लिए नगरपालिका की आपूर्ति पर निर्भरता घटाई जा सकती है, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय योगदान दिया जा सकता है। बढ़ते भूजल संकट ने प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। वर्षा जल संचयन

0: के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम।
0: श्रोता, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूले। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्सचेंजर @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कैच द रेन के बारे में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय की अपील की थी लोगों से और कहा था कि वर्षा का जो बूंद बूंद जो है वो हमें बचाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस अभियान के बारे में?
1: धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार फिर से कैच द रेन की इंटेंसिफाई करने के लिए, इसको एक मास मूवमेंट बनाने के लिए सबसे अपील किया है। उन्होंने हमको पांच बिंदुओं पे एक्शन लेने के लिए अपील भी किया है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रत्येक घर में, समाज में, वर्क प्लेस में अपनाएं। दूसरा उन्होंने कहा है कि रिचार्ज पिट को, रिचार्ज शाफ्ट को अप्रोप्रिएट जगह पे इंस्टॉल करा जाए। अपने हमारे ट्रेडिशनल बॉडीज हैं जैसे बाउलीज होती थी, कुएं होते थे, उनको रिस्टोर किया जाए। इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि क्या हमारे जैसे पुराने तालाब हैं या वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जिनमें सिल्ट जमा होने से उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो क्या उस कैपेसिटी को हम डीसिल्ट करके उनकी कैपेसिटी को रिस्टोर करें ताकि अधिक से अधिक वहाँ पे मॉनसून का जल एकत्रित हो सके। और अंत में मैक्सिमम जितना हम वृक्षारोपण कर सकें ताकि इन वाटर रिटेंशन एरियाज के निकटतम जितना ग्रीन कवरेज बढ़ेगी उतना ही जल संरक्षण भी अधिक होगा।
0: हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी। रवि जी, अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
2: जी, और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ सर, आप कैसे हैं सर?
1: मैं ठीक हूँ रवि, आप बताएं। आप तो गंगा नगरी में हैं, आप तो गंगा की नगरी से बोल रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, हरिद्वार गंगा की नगरी है, गंगा पवित्र नदी है राष्ट्र में। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्षा का जल बचाने के लिए एक आम नागरिक उसमें किस प्रकार से अपना योगदान देना दे सकता है सर?
1: रवि जी, आपने तो जैसे मेरे मन की बात छीन ली, जैसे मैं सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना ही चाहता था। और यदि मैं सबसे पहले बताऊं, हम लोग आप रवि जी कहाँ रहते हैं? आपकी कॉलोनी है, आपका अपना घर है, कैसे?
0: हमारा संपर्क इनसे टूट गया, हालांकि ये हमारी बात सुन पा रहे हैं।
1: ओके, सो मैं ये मानता हूँ कि रवि जी किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, एक अपार्टमेंट में हैं। तो रवि जी, यदि आपका ऐसा है तो इस कॉलोनी में कम्युनिटी बेस्ड प्रत्येक घर में, जैसे हमारे वर्षा हुई, सारी छतों पे पानी एकत्रित होता है, क्या हम उसको पाइप के माध्यम से एक रिचार्ज पिट एक कॉमन एरिया में गड्ढे खोद के, मे बी 3x3x3 का गड्ढा खोद कर उसमें कुछ ग्रेवल और सैंड टाइप से डाल सके ताकि जल सभी छतों से जो बहे वो व्यर्थ होने के अपेक्षा में उस गड्ढे में एकत्रित हो जाए ताकि धीमे धीमे वो भूजल को भी बढ़ा सके?
0: भूजल का स्तर इससे बढ़ता है और भूजल का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वर्षा जल संचयन किया जाए। तो क्या जो आम आदमी के लिए आपने जो बात बताई कि वर्षा जल का संचयन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कितना खर्च आएगा अगर हम वर्षा जल संचयन करना चाहें अपने घर की छतों पर? तो
1: मैडम, और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे बचपन में हम लोग सर्वप्रथम पहले कहते थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए
0: जी।
1: कहते थे पहली बारिश से जो धूल निकल जाए, धूल मिट्टी निकल जाए, उसके

0: कल ज्ञान दूं, तो फर्स्ट फ्लश सिस्टम लगाएं, सैंड का प्रयोग करें, बजरी डाल लें ताकि पानी दलदल बनने के बजाय वो सीधे भूजल में जाए, वो कॉम्प्लिकेट बोलूं तो मल्टीपल लेयर फिल्टर, ताकि जो अगर कोई धूल मिट्टी आ रही है वो भी फिल्टर होके ताकि भूजल में जब जाए तो स्वच्छ पानी जाए। इसका खर्चा अंदाजन अगर ये 3x3x3 का करते हैं तो मुझे बताया गया कि 10 से 15 हज़ार। ऑफकोर्स ये रीजन स्पेसिफिक होगा, वहाँ पे पत्थर की क्या है, भूमि कैसी है, उस पर निर्धारित करेगा, पर अंदाजन इतना खर्चा आना चाहिए, जो कि अगर हमारे एक कॉलोनी में हम बनाने की कोशिश करें तो एक सार्वजनिक रूप से ये शायद, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे अपने भविष्य के निर्भर करता है इस इन चीजों पे, तो शायद मेरा मानना है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: हमारे दूसरे श्रोता हैं सासाराम बिहार से अमित
2: जी। नमस्कार, मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का जैसे सरकार की तरफ से कुछ जैसे कैसे अभी घर सूर्य घर योजना के तहत बहुत व्यापक तौर से इसको व्यापक तौर पर सरकार प्रचार प्रसार करे, उसी टाइप से इसको भी एक लेकर जल संचय को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि घर में हम रेन हार्वेस्टिंग करें या फिर अपने कॉलोनी में, जैसे सर अभी बता रहे थे, उसको संचय करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे इसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर झुकाव करें और बचाने के लिए इस बारे में सोचे।
0: अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी अपने सभी भाइयों बहनों और बाकियों को भी ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जल संचय जन भागीदारी नाम की एक अभियान का इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयत्न है कि कैसे, जैसे ये नाम ही सजेस्ट करता है, जल संचय जन भागीदारी, तो कैसे अधिकाधिक इसमें जनता, समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग और जो कहते हैं ना नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, उनका भी अधिक से अधिक इसमें वो सम्मिलित हो सके। और सम्मिलित होने का मतलब ये है, जैसे इसमें कई उदाहरण भी मैं देना चाहूंगा
1: जी।
0: कुछ एग्जांपल अगर बोलूं तो छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक और मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। वहां के किसानों ने अपने 5% भूमि जल संरक्षण के लिए यूटिलाइज किया। उसी क्रम में जैसे बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां की बानस डेयरी ने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। मैं इस तरह एग्जांपल दे सकता हूँ, नॉर्थ त्रिपुरा में एक कम्युनिटी, करीब 500 घर हैं, वहाँ कम्युनिटी ने मिलकर ही अपने सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर सबसे बड़ी बात इस अभियान का या इस इनिशिएटिव का मैं बोलूं तो इसमें जन जागरूकता एक, जन पार्टिसिपेशन दो, एंड कम्युनिटी ओनरशिप, ताकि ये मेरा भविष्य है, मेरे बच्चों का भविष्य है,
1: मेरी जिम्मेदारी है,
0: उस पे जोर डाला जा रहा है। और अधिकाधिक आप सभी जगह जान के ये खुशी भी होगी कि JSJB जल संचय जन भागीदारी के सीरियल जो 1.0 था, जो कि 24 से 25 में था, 31 मई 2025 को खत्म हुआ था। माफी चाहूंगा यदि मेरा जवाब ज्यादा लंबा हो रहा है,
1: नहीं नहीं,
0: बट जनता को बताना भी जरूरी है कि जो
1: है।
0: जी, तो 10 लाख का टारगेट, मतलब इस पीरियड में इतने आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था जन भागीदारी से। और जो मैंने बानस काठा का एग्जाम्पल दिया और जो अदर एग्जाम्पल जी, 10 लाख के अगेंस्ट करीब 25 लाख से अधिक स्ट्रक्चर्स बने, और उसका एक आकलन के हिसाब से 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज हुआ। अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंस के टर्म में बोलूं तो एक रंजीत सागर डैम है थेम रावी रिवर पे, या उसकी कैपेसिटी करीब इतनी है। तो ये मानना होगा कि 6-8 महीने में, सितंबर से लेकर मई तक, इतने स्ट्रक्चर्स बने कि उसने एक, और जन भागीदारी से बने कि उसने एक डैम के बराबर का
1: पानी इकट्ठा,
0: जल इकट्ठा एक्वीफर में कर दिया।
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और तो ये भी प्रेरणा

0: ये प्रेरणा है, ये सभी के लिए हौसला अफजाई का भी है और हमको ये आगे के लिए भी इंस्पायर करती है कि हम कैसे और से आगे कर सकें।
1: फोन लाइन पर उड़ीसा से है अब देशदीप दास। देशदीप जी आप हमें सुन रहे हैं?
2: जी नमस्ते जी। नारायण जी और कनकलता जी मेरा सादर नमन आपसे।
1: नमन
0: प्रणाम आपको भी देशदीप जी।
2: जी नमस्ते जी। जी मेरा सवाल है
1: जी,
2: एक सामान्य आवासीय घर या बड़ी इमारत के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने में कितना खर्च आता है और इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है?
0: देशदीप जी धन्यवाद। मैं मुख्य कंपोनेंट्स आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को दोबारा बता देना चाहूंगा कि इसके मुख्य आम तौर पे जो फिल्टर सो छत में पानी जो एकत्रित हुआ उसको एक पाइप के माध्यम से नीचे ले गए जमीन के स्तर पर और जमीन में एक रिचार्ज पिट बनाया जिसमें फिल्टर लगाया जो मैंने फर्स्ट फ्लश सिस्टम बताया। फिर मैंने सैंड का सो ताकि सैंड ऊपर फाइन मटेरियल हो नीचे ग्रेवल हो ताकि वो पानी को दलदल ना बने या मिट्टी इकट्ठा ना हो तो और धीमे धीमे सीप करे। इस तरह से बड़ी ही सिंपल तरीके से एक आम नागरिक आपके और मेरे जैसे लोग इस भूजल को मतलब रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक नागरिक प्रत्येक समुदाय प्रत्येक समाज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत ही सिंपल प्रणाली है, इसको अपनाएं और अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें।
1: एक बात और बताइए कि क्या ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है ये सिर्फ नई इमारतों में ही लगाया जा सकता है या जो पुराने घर बने हुए हैं कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है?
0: मैडम इसको कहीं भी लगाया जा सकता है क्योंकि जब वर्षा होती है वो पुराने और नए घरों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती, वर्षा तो प्रकृति से आ रही है। ये हमको ध्यान देना है कि जो पुरानी अगर इमारत है तो जो छत है उस कितनी समतल है क्या स्लोप है उससे वो निर्धारित ताकि जो पाइप में जो पानी एकत्रित हो इधर उधर एकत्रित होने के बजाय पूरा अधिक से अधिक जल पाइप के माध्यम से भूजल तक पहुंच जाए। शॉर्ट आंसर देयर इज नो डिफरेंशिएशन, लॉन्ग आंसर मैंने आपको बताया।
1: इस तरह का जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है वो क्या पीने में और खाना बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल किया मैडम आपने। इस तरह से पानी हम लोग ये सोचेंगे कि अगर जैसे फर्स्ट फ्लश से सारी धूल मिट्टी निकल गई फिर हम इसको भूजल में रिचार्ज करें। अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया है, फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, इनफैक्ट आज भी जो हम दोहन कर रहे हैं जिन भी डिस्ट्रिक्ट में या गाँव में या ब्लॉक्स में हम दोहन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर दोहन कर रहे हैं वहां तो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं,
1: इसी तरह से भी कर सकते हैं। रमाकांत वाजपेयी जी हैं उत्तर प्रदेश से।
3: नमस्कार।
1: नमस्कार रमाकांत जी।
0: नमस्कार
3: रमाकांत
0: जी। नमस्ते।
3: नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह से जल सुरक्षा और जल पुनर्भरण भूगर्भीय जल पुनर्भरण तो जल सुरक्षा का मतलब है कि जब हम एक लीटर पानी खर्च करते थे आज उस जगह जो है नए व्हीकल आ गए, नए नई परंपराएं हो गई, नई चीजें, इनमें हजारों लीटर पानी खत्म होता। और दूसरी चीज है भूगर्भीय जल पुनर्भरण तो कंक्रीट का सड़क, कंक्रीट की गली, ऊपर से नीचे पानी जाता नहीं है, कुंड टूट दिए गए हैं, तो बताइए कैसे जो है जल पुनर्भरण हो।
0: रमाकांत जी आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हमारे समुदाय बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ जरूरी है और कहते हैं ना जल ही जीवन है तो इन सब के लिए जल तो अति आवश्यक है। सो आपकी मेरी कनकलता मैडम की और पूरे समुदाय की यह जिम्मेदारी भी है कि कैसे हम अधिक से अधिक जल को संरक्षण कर सकें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे समुदाय के तौर पे हम कंटूर ट्रेंचेस बनाएं या देर आर मतलब कई सारे तरीके होते हैं आर्टिफिशियल रिचार्ज कृत्रिम स्ट्रक्चर बनाने के। एक उनमें से रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा कि जैसे किसान मैंने कोरिया वाला बताया, अगर कंटूर ट्रेंच बना ले या रिचार्ज पिट बना ले, सो ये छोटे छोटे तरीकों से जैसे जमीन हुई, जैसे इकोसिस्टम हुआ, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, पानी का संरक्षण किया, भूजल का अपग्रेडेशन हुआ, और साथ ही साथ ऐसे समझे कि जो बारिश अगर सरफेस रन ऑफ या पानी का व्यर्थ बह जाती, वो पानी मैंने एकत्रित कर लिया जो मैं अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकता हूँ।
1: भविष्य के लिए निवेश है,
0: भविष्य का बिल्कुल निवेश है। जैसे हम पिगी बैंक में अपने एक एक पैसे डालते हैं,
1: बच्चे डालते हैं,
0: बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने भविष्य के लिए एक एक बूंद को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि एक एक बूंद को बचाना है, उसी तरह हमारे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है।
1: हर बूंद कीमती है।
0: जी बिल्कुल।
1: श्रोता, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप इस पर सवाल भेज सकते हैं। नंबर है 2331048123717117, 2371716 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्सेंडर @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अब हमारे साथ अगले श्रोता की अभी प्रतीक्षा है, तब तक आप हमें ये बताइए सुमन जी की जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, इसका रख रखाव भी क्या कठिन होता है, किस करते हैं?
0: मैडम बिल्कुल आपका सही सवाल है कि, बट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना या एस्टैब्लिश करना जितना सिंपल है, रख रखाव उससे भी अधिक मैं कहूँगा सिंपल है कि बस साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर 6-8 महीने में एक बार, जैसे मानसून से पहले एक बार सफाई कर दिए ताकि वो रिचार्ज होने के लिए, जैसे कहते हैं ना, तैयार
1: होए,
0: तो वो साफ सफाई हो गई, धूल मिट्टी हट गई, अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ गर्द आ गई और वो साफ हो गया, ताकि जब जल आए वो धीमे धीमे भूजल पे मतलब अपग्रेड हो जाए,
1: स्तर ऊपर
0: हो जाए।
1: वर्षा जल संचयन योजना 2025 की काफी चर्चा है, आप इसके बारे में श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैंने पिछले उत्तर में शायद आधा ही बताया था कि जैसे जीएसजेबी जल संचय जन भागीदारी 1.0 जो 2024 से 25 चली, उसमें क्या हुआ। अब ये अवसर मुझे आपके प्रश्न से मिलता है कि 2025 से 26 जो जल संचय जन भागीदारी, जिसको हम 2.0 कहते हैं, वो 1 जून 2025 को स्टार्ट हुई थी और 31 में अभी 31 मई 2026 को खत्म हुई है। उसके अंतर्गत भी देश से बहुत करीब 700 डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पे वहां की जनता ने, वहां के क्राउड ने, वहां के डिस्ट्रिक्ट्स ने, वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने, वहां की इंडस्ट्री ने, वहां के एनजीओस ने, सब ने मिलकर जो आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया रूफटॉप रेन वाटर या हार्वेस्टिंग, या फिर जैसे रिचार्ज पिट हुआ या रिचार्ज शाफ्ट हुआ, इस तरह के जो करीब 18-19 तरीके के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, 1 करोड़ का टारगेट हमारा, हमने इंटरनली जो हमारे लिए सेट किया गया था, उस 1 करोड़ टारगेट के अगेंस्ट पूरे भारतवर्ष से करीब 1.5 करोड़ स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं,
1: ज्यादा बन गए,
0: मतलब
1: जितना लक्ष्य था
0: उस लक्ष्य से करीब 50% अधिक बने। और मैंने बताया ना कि अगर 2.4 BCM जो कि करीब 23-24 लाख स्ट्रक्चर से बने थे जितना रिचार्ज हुआ था, तो हम अभी यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कितना फायदा हमारे आने वाले समय में दिखेगा। सो इसमें भी जन समुदाय भागीदारी, नॉन गवर्नमेंटल, ऑफकोर्स सरकार तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है, बट सभी लोगों
1: की भागीदारी बहुत
0: महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी कहते ना, कोई भी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी ये फोकस है कि जैसे इसको मास मूवमेंट बनाया जाए, कैसे इसकी जन ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप हो, ये हमारा भी प्रयत्न है कि इसको हम आगे से आगे कैसे लेके जा

0: पाए। इनफैक्ट आज जो आपका रेडियो का कार्यक्रम है ये एक अपने आप में एक माध्यम है कि लोगों की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे पता चले कि आप जैसे आपके स्टूडियो में मैं तीन चार लोगों को देख सकता हूं, जब हम अपने घर जाएं क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे।
1: आपने कहा लोगों तक हम पहुंच सके। देखिए शिमला से एक सवाल आया है राकेश जी का। राकेश जी
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला जिले की कोटखाई से।
1: नमस्कार।
2: और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे सर्दी में जो कई बार जो है माइनस में तापमान चलता है और हमारी जो है बर्फबारी होती है काफी कोटखाई क्षेत्र में, तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो बर्फ का जो पानी है उसको किस तरह से जो है संरक्षण किया जा सकता है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, बिकॉज आप शिमलाई के लिए नहीं, ये प्रश्न मेरे ख्याल से हमारे पहाड़ी राज्यों में कई डिस्ट्रिक्ट्स पे ये लागू किया जा सकता है।
1: लद्दाख के बारे में बताइए।
0: आई एम सो ग्लैड आपने ये पूछा। इनफैक्ट लद्दाख का एक अभी कुछ हफ्तों पहले ही मुझे एक एग्जांपल बताया गया था कि लद्दाख में कैसे लोग अपना वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण कर रहे हैं। वहां डिटेल्स तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मगर जल स्तूपा का कॉन्सेप्ट वो लोग लाए हैं कि एक बर्फ के एक स्तूप बनाते हैं और उस स्तूप से ताकि वो धीमे धीमे जब वो पानी गलता जाए तो विंटर में जाड़ों में वो पानी एकत्रित हो गया, बर्फ बन गई, और वो समर में जब वो गलना स्टार्ट होती है तो धीमे धीमे पाइप के माध्यम से मेन स्ट्रीम में ले जाया जाता है। तो राकेश जी आपने बहुत सही सवाल पूछा कि हम शिमला हो, लद्दाख हो, सिक्किम में ये सब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी गुड प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। हमने सभी राज्यों से शेयर भी किया है और आप वेबसाइट भी अगर अपने वेबसाइट देखेंगे तो भी आपको इसके विस्तृत जानकारी मिल सकती है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का।
1: एक और श्रोता हमारे साथ है विवेक। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। विवेक जी
3: नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव जयपुर से बोल रहा हूँ
1: जी।
3: सर मेरा प्रश्न था जैसे सोलर के लिए बहुत मार्केटिंग है, काफी लोग फोन आते हैं तो हम लोग उससे करा भी लेते हैं, बहुत सोलर के लिए जैसे अच्छे रेस्पॉन्स है, इस तरह की हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए या कोई टोल फ्री नंबर या कुछ संस्थाएं सरकारी प्रेरित करें, हमें बताएं कैसे लगाएं क्या करें, तो एक यूजर फ्रेंडली जो चीज होना तो इसको करा जा सकता है।
0: विवेक जी बहुत सही सवाल है कि आम नागरिक के लिए इसको कैसे आसान किया जाए। तो आपको और मैडम आपके माध्यम से बाकी श्रोताओं को भी ये जानकर बताने से मुझे हर्ष हो रहा है कि देश भर में करीब 700 जल शक्ति केंद्रज हैं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केवीकेज हैं उसी तरह जल शक्ति केंद्रज हैं। हर अब ये जयपुर से कर रहे हैं तो मुझे उनका टोल फ्री नंबर नहीं पता है, मगर डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्र में तो एक टोल फ्री नंबर है, आप उनको फोन करें, आपको जो सिंपल तकनीकी राय लेनी हो कि हम कैसे संरक्षण, बिकॉज जयपुर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है अपितु शिमला से या उत्तर प्रदेश जो हमारे डिफरेंट श्रोता हुए हैं, तो आपको रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सबसे आसान और सुविधाजनक समाधान होगा वो आपको आपका जल शक्ति केंद्र ही बता सकता है लोकल रिक्वायरमेंट।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सुमंत जी, मिशन अमृत सरोवर की चर्चा होती है और अटल भूजल योजना की भी चर्चा काफी हो रही है, ये सारी जो पहले है सरकार की ओर से की जा रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके, इन सब के बारे में आप कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे?
0: धन्यवाद मैडम आपके इस सवाल का। आप यही समझे कि जो होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाए, उसी के अंतर्गत आपने अमृत सरोवर बोला, या अटल भूजल योजना बोली, एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे भूजल, कहीं पे सरोवर बनेगा कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जांपल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह मैं एग्जांपल्स, देश भर में अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना, रिपीट कर रहा हूं, मगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक,
1: बच्चों को भी जागरूक किया जाना चाहिए इसके लिए।
0: Absolutely, कहते हैं ना कि बच्चों से ही जितना बिहेवियर चेंज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बच्चों के सिलेबस में
1: इसको जोड़ा जाना चाहिए।
0: कई कक्षाओं में जुड़ा हुआ है, जैसे छठवीं सातवीं कक्षा के सिलेबस में चैप्टर्स हैं। इसको हम और अवेयरनेस मॉडल्स, जैसे एक ये रेडियो प्रोग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ या सोशल मीडिया हुआ,
1: आकाशवाणी पर भी इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी पे डेली जिंगल्स चल रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस मिशन को या अभियान को हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं।
1: सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी प्रभावी भूजल प्रबंधन आवश्यक है, और जैसा कि आपने बताया कि जो बावड़ियां हैं पुरानी, उन सबको भी, उनका भी पुनरुद्धार करने की कोशिश चल रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव सुमंत नारायण स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsatalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस गीत से। फिल्म का नाम है वो कौन थी, गीतकार राजा मेहदी अली खां और संगीतकार मदन मोहन।

वो कौन थी? इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश और साथियों की आवाज़ों में है, कवि प्रदीप का लिखा हुआ। संगीत निर्देशक हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है संबंध।

मुकेश और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म संबंध में। अब हम आपको सुनवाते हैं कैफी आजमी का लिखा हुआ गीत, मदन मोहन का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है हंसते जख्म।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म संगम से, आवाज मुकेश की है, शब्द रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

की आंखें। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने इस फिल्म से लिया है। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं, बोल साहिर लुधियानवी के और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। रात के 10:30 बजे हैं राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज सुनिए मुन्ने खां का सारंगी पर बजाया राग पूरिया धनाश्री।

राग रजनी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे मुन्ने खां का सारंगी पर बजाया राग पूरिया धनाश्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की

0: राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal's South 24 Parganas district. In a social media post, the President said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the Vice President prayed for the speedy recovery of those injured. In a social media post, Mr. Modi said his thoughts are with the bereaved families and hoped for the speedy recovery of those injured. He also announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. 15 fishermen went off for fishing from the Shankarpur Sea Harbour on 2nd of July on FB Mahakali trawler. After 5th July, connection has been lost with the fishing trawler. A joint team of Coast Guard, Navy, state agencies found the capsized trawler on 12th July afternoon in the Bay of Bengal. 9 decomposed bodies have been recovered from the cabin of the ill-fated